मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 है। इस वक्त सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का।

भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन जीवन को बदलने का अवसर है। क्रोध छोड़ो, करुणा अपनाओ, यही सच्चा संदेश है। आइए शुरू करते हैं वंदना कार्यक्रम को हवेली संगीत के माध्यम से।

जिनके मन में है श्री राम, जिनके तन में है श्री राम, जग में सबसे है वो बलवान, ऐसे प्यारे मेरे वे हनुमान।

भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।

हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान।

प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। ये था भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

ये थी वंदना, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। ये वक्त है हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित किए जाने वाले खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में आपको जानकारी देने का। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज 6:50 पर सवेरे। दोपहर 2:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम सुनिएगा और शाम 7 बजे खेती और घर।

फिल्म संगीत, जी हाँ फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सवेरे 7 बजे, सवेरे 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1:45 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 बजे भी फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं फिल्मी नगमों का।

सुगम संगीत आप सुन सकते हैं सवेरे 7:45 पर, सवेरे 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर।

शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं सवेरे 11 बजे। सहेलियारी बाड़ी हमारी ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:05 पर। हमारे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनिएगा सवेरे 9:30 पर। और हमारा खास मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आप सुनिएगा सवेरे 8:30 से 9:30 तक।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रिले पर प्रसारित किए जाने वाले खास खास कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

ये आकाशवाणी है। सवेरे के 6:40 होने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई ने नीता कोठारी रो राम राम। किसान भाया आज बात करांगा अणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। बागवानी रा काम जो किसान भाई कर रहा है वी केलारी फसल महीने रोपित केलारे वास्ते 1.5 मीटर री दूरी पे 50x50 सेंटीमीटर रा खाड़ा बनाई लेना है। हर एक खाड़ा महीने 10 किलोग्राम सड़ी तकी गोबर री खाद, कंपोस्टरी खाद, 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन, 50 ग्राम फॉस्फोरस और खेत रे ऊपर री मिट्टी मिलाई ने गड्ढा ने भर देना है। रोपित केला रे महीने 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधा 50 सेंटीमीटर दूरी पे गोलाई में नाक ने मिट्टी में मिलाई ने पछे पानत करनी है। कागजी नींबू में फल फाटवारी समस्या किसान भाई आनी टाइम पे रेवे अंडे निराकरण रे वास्ते पोटेशियम सल्फेट रे 4% रो गोल पानी में मिलाई ने छिड़काव कर लीजो। अंगूर रे बाग में अणी गर्मी रा मौसम रे महीने 1 सप्ताह रे अंतराल पे पानत रो काम करनो है। किसान भाया एंथ्रेक्नोज और सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग री रोकथाम रे वास्ते फाइटालोन रहा पछे 22 टॉक्स रो 0.3% रो छिड़काव करनो है। यानी कि 750 ग्राम 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ मई रे पहला सप्ताह में छिड़काव करनो है और 15 दिनारे अंतराल पे यानी 92 अण में छिड़काव कर सका और यो छिड़काव सितंबर महीना तक आपने लगातार करता रहनो है। लीची री बात करा किसान भाया तो लीची रे पौधा में फल मई जून में पाक ने तैयार भेजावे। फल पाक वारे केड़े गहरा गुलाबी और लाल रंग रा भेजावे और लीची रे फलारी तुड़ाई मई जुलाई तक रे बच्चे आपने कर सका। फला रे फटनो लीची री एक खास समस्या है जो की फल री बढ़तवार रे टेम पे जमीन रे महीने नमी री कमी रेवा जाऊं वेवे या पछे तेज गरम हवारे चालवारे कारण या समस्या वेवे। जमीन रे महीने नमी बनाए राखनी है किसान भाया और अंडे वास्ते देखो फल गिरवा लागे तो मणी लेने पकवा लागे मणि तक बाग में हल्की पाणत करता रहनो है। लारिस देखो फल विगलन रोग रे बचाव रे वास्ते फलारे पाकवाऊ 20-25 दनारे पहले बावेस्टिन री 10 ग्राम मात्रा ने 10 लीटर पानी में गोल ने फला पे छिड़काव कर देनो है। औषधीय पौधा री बात करा तो देखो मेथा री फसल में महीने 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन री तीसरी और अंतिम ट्रो ड्रेसिंग आपने जरूर कर लेनी है। मेथा फसल री कटाई 100-120 दनारे बच्चे करनी है। जदि की पौधा में कलिया मणवा लागे वदी करनी है और दूजी कटाई पहली कटाई रे 70-80 दिना पे किसान भाया कर लीजो। पौधा री कटाई मिट्टी री सतह 4-5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे करनी चाहे किसान भाया और कटाई रे केड़े पौधा ने 2-3 घंटा तक खुली धूप में छोड़ देना चाहे। कटाई रे केड़े कटी तकी फसल ने छाया महीने हल्को सुखाई ने जल्दी आसवन विधि यंत्र तेल निकाल लेना चाहे। जदि जो है मेथा रे पौधा हाउ जो है उपज आप ले सकांगा। सर्प गंधारी बात करा किसान भाया तो अंडी नर्सरी मई महीना में आपा नाक सका। प्रति हेक्टेयर खेतरी रोपाई रे वास्ते 6-7 किलोग्राम बीज री जरूरत वेगा। तुलसी और सफेद मुसली री बात करा तो अंडी वावणी भी अणी महीना में कर सका जो कि एक फायदेमंद औषधीय फसल है। मई में रोपाई दोपहर रे केड़े करनी चावे, रोपाई रे केड़े तुरंत खेत में पाणत कर देनी चावे। हल्की वर्खा वाला दन में तुलसी और धोली मुसली री रोपाई रे वास्ते बहुत ही उपयुक्त रहे। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रे वास्ते 750 ग्राम 1 किलोग्राम तुलसी रा बीज पर्याप्त वेगा। अंडी रोपाई कतारू कतार और पौधों पौधारी दूरी 60x30 सेंटीमीटर री दूरी पे करनी चावे सा। सुगंधी पौधा री बात करा किसान भाया तो रजनीगंधा में 1 सप्ताह रे अंतराल पे पाणत कर देनी है। 2 सप्ताह रे अंतराल पे निराई गुड़ाई करता रहना चाहे जण्यू खेत में खरपतवार नहीं बढ़ेगा और जो फसल रे वास्ते देखो खरपतवार हानिकारक वे वे अणी वास्ते आपाने जो है टेम टेम पे निराई गुड़ाई करता रहना है। और देर लगावा वाला जो व्यवसाय है वंडे योग्य पुष्प डंडिया तो मिल जावे लेकिन नवजात कंद कम बने। पहाड़ी इलाका रे महीने कंद रोपण रो उचित टाइम मई जून तक रहे। कंद ने पंक्तिया में लगानो ठीक रहे। पंक्ति री दूरी री बात करा तो 30-40 सेंटीमीटर और पंक्तिया में कंद कंदरी दूरी री बात करा तो 15-20 सेंटीमीटर राखनी चावे। 1 एकड़ रजनीगंधा लगावा रे वास्ते लगभग 50-60 हजार कंदरी जरूर।

वेगा और किसान भाया हाउ पुष्प डंडिया प्राप्त करवारे वास्ते 3-5 सेंटीमीटर व्यास वाला जो कंद है भी लगाना हाउ रे वे। कंद लगाती टेम पे खेत में नमी रहना जरूरी है और कंद कल्ला अंकुरित वेता नजर आवे जनी टेम पे पाणत कर देनी चावे। टेम टेम पे किसान भाया वातावरण रे अनुसार पाणत करतो रहना है। हाउ पैदावार रे वास्ते खेत में नमी बनाए रखनी भी जरूरी है। गुलाबरी बात करा तो गुलाबरी फसल में जरूरत रे अनुसार किसान भाया पाणा तो निराई गुड़ाई रो काम अपने कर लेनो है। चाइना एस्टर गेंदा और कॉर्नेशन में शीर्ष नोचन और लीलियम में फुलारी तुड़ाई शुरू कर देनी है। पुष्प वाला पौधा में कीट या रोग रो प्रकोप वे तो 0.2% फफूंदी नाशक केप्टोन या पचे बावेस्टीन और 0.2% कीटनाशक दवाई रोगार मेटासिटॉक्स अणा सबरो गोल मनाई ने 20-25 दिन रे अंतराल पे छिड़काव कर देनो है। ग्लेडियोलस री बात करा किसान भाई तो अंडी खेती रे महीने पाणत लगभग 10-12 दिन रे अंतराल पे करनी है। ध्यान यो देनो है कि जदि कंद जमीन नु निकल रिया वे वणी तेम पे आपणे वणा में 2-3 सप्ताह तक पानी रोक देनो है। अणी तरह पौधा रो विकास हाउ वेगा। डोफेडिल नरगिस री बात करा तो अण में कंदरा कल्ला अंकुरित वेता नजरे आवे तो पाणत कर देनी चावे। हव उपज लेवारे वास्ते खेत में नमी बनाए रखनी चावे और रोग और कीड़ारो प्रकोप वेरो वे किसान भाया तो 0.2% बावेस्टीन और 0.2% रोगोर या मेटासिटॉक्स अणा सबरो गोल मनाई ने 20-25 दिन रे अंतराल पे अपने छिड़काव कर देनो है। किसान भाया अबे बात करा वेस्ट डी कंपोजर खेत रे कचरा री जने उन देखो आपा जैविक खाद बनाई सका और या खाद जो है बहुत ही शक्तिशाली वे या मिट्टी री उर्वरता ने बढ़ावे। केंचुआ और मित्र जीवाणुओं री संख्या में वृद्धि करे और लारे इस पराली जलावारी जैसी समस्या है वणियों भी मुक्ति दिलावे। और अंडे देखो सामग्री री बात करा तो वेस्ट डी कंपोजर आपने लेनो है, गुड़ लेनो है और पानी लेनो है। इन्हें देखो छाया में रखनो है, प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ उपयोग नहीं करना है और टेम टेम पे देखो नमी बनाया रखनी है। प्रयोग री विधि री बात करा देखो 200 लीटर पानी रे महीने 2 किलो गुड़ और 1 शीशी वेस्ट डी कंपोजर ने हाउ तरीका मिलाई देनो है। गोल ने 7 दिन रे वास्ते किंडवन रे वास्ते छोड़ देनो है। रोजाना सुबह शाम लकड़ी री छड़ी हूँ हिलाता रहनो है। तैयार गोल रो देखो फसल अवशेष पराली पे छिड़काव करता रहनो है और नमी बनाया रखवारे वास्ते टेम टेम पे पानी रो छिड़काव भी करनो है। 30-40 दिन रे बाद देखो खाद तैयार वही जाएगा। खाद रे देखो फायदा री बात करा तो या मिट्टी री उर्वरता और जैविक कार्बन बढ़ावे, केंचुआ और मित्र जीवाणु अणु बढ़े, फसल री पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़े, रासायनिक खाद री जरूरत कम वेवे और पराली जलावा जैसा जो प्रदूषण वेवे वणी भी मुक्ति मिल सके और मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़े। और देखो पानी और गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर ने आपने मिलाई लेनो है। यो किस तरह काम करे अन्य बतावा हुआ 7 दिन तक अन्य किंडवन रे वास्ते छोड़नो है। फसल अवशेष पराली है अणा पे आपने छिड़काव करनो और 30-40 दना में तैयार कालो सोनो जो है शक्तिशाली खाद बन जाएगा। इन्हें देखो कटे कटे उपयोग कर सका तो फसल अवशेष रो पराली धान गेहूं गन्ना अणा सबरा जो अवशेष है वणा ने फेरा कर देना है। जैविक कचरो जिसरे की पशु गोबर है, सूखो पत्ता है अणा सब ने आपने ले लेनो है। रसोई रो कचरो जिसके साग भाजी रा छिलका है ई सब आपने उपयोग कर सका। बगीचा रो कचरो जिसके सूखा पत्ता टहनिया है अणा सब रो उपयोग जो है आपा खाद बनावा ने कर सका। अणी तरह किसान भाई खेती बाड़ी रो काम करो का तो बागवानी फसल उत्पादन भी होवेगा। खाद भी देखो रासायनिक खाद रो प्रयोग आपने कम करना पड़ेगा और आपने खेता में और आपने रसोड़ा में मिलवा वालो जो कचरो है वणियों से आपा खाद बनाई ने उपयोग कर सकांगा। अबे देखो माने कार्यक्रम रो टेम भी गयो तो चाला सा राम राम सा।

किसान भाइयों ने सुना अभी हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती में आज आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बज रहे हैं और ये वक्त है सदाबहार नगमों का।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना दाग फिल्म के इस गीत में। आइए लता और किशोर को एक बार फिर सुनते हैं फिल्म अवतार के इस गीत में।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। श्रोता वांगी, अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म झुक गया आसमान से ये नगमा।

शक्ति फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। आइए जानी दुश्मन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी हम सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

तेरे हाथों में पहना दूं चूड़ियां। जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को फिल्म शान में।

0: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। दर्द फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की। आइए अगला और आखिरी सदाबहार नगमे का ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ में, फिल्म जॉनी मेरा नाम से।

पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना, और इस नगमे के साथ ही सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज सुगम संगीत में हम सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजलें।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत में आज आपने सुना जगजीत सिंह की गाई गजलों को। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप

0: में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रूपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से

0: अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स

0: में लक्ष्य सेन, एच एस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in

0: सपनों के जहां से अब लौट आओ, हुई है सुबह अब जाग जाओ, चांद तारों को अब कहकर अलविदा, इस नए दिन की खुशियों में खो जाओ। तो उम्मीदों के इस दामन को थाम कर, सपनों को जानकर, खुशियां हैं बरसने वाली, तो आज को पहचान कर करते हैं शुरुआत इस प्रोग्राम की। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त कामिनी,
1: और मैं हूँ रश्मि। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार
0: और आइए जानते हैं इन सपनों को।

0: तो रश्मि, तो ये है कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन क्या क्या होता है वो हमारे श्रोताओं को बता दें। सबसे पहले ड्रीम ब्रेकर में छोटी आदतें जीवन में लाए बदलाव, इस पर हम बातचीत करेंगे। दैनिक खबरें देंगे, आईपीएल की बातें करेंगे। सोशल पर्ल्स में आज हम पारंपरिक खेल और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। साथ ही अवेयरनेस में हम वेब सीरीज पर बात करेंगे, जो कि युवाओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जो मौसम है और हेल्थ है दोनों पर बात करेंगे कि अर्बन हीट लैंड क्या इफेक्ट देती है हमें।
1: बिल्कुल, और देखिए जहाँ तक आपने खबरों की बात की है तो इस वक्त चरम पर है आईपीएल।

0: चलिए, तो ट्यून समझकर हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे कि हम आईपीएल की बात करने वाले हैं। और अब तो आईपीएल का जो बुखार है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब 31 मई को तो हम फाइनल जो है वो रिजल्ट देख ही लेंगे। फिलहाल हम आज की बात करें तो आज से प्ले ऑफ चरण जो है वो शुरू होने वाला है। पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला आज शाम 7:30 बजे होने वाला है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के खिताब की उम्मीदों के लिए अहम है, क्योंकि इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। हालांकि हारने वाली टीम बाहर नहीं होगी, उसे क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर के विजेता से भिड़कर खिताबी मैच में पहुंचने का एक और अवसर मिलेगा। बेंगलुरु की टीम यहां पर अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर पहुंची है। हालांकि उसके अंक गुजरात के बराबर 18 ही थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वो टेबल टॉपर पर पहुंच चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु अगर ये मैच जीतती है तो लगातार दूसरे फाइनल में जगह बना लेगी, और ऐसा उसके लीग इतिहास में पहली बार होगा। इससे पहले चेन्नई, मुंबई और गुजरात ऐसा कर पाए हैं। और जहां तक मैच की बात करें तो ये मैच सीजन के टॉप परफॉर्मर की टक्कर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात के सुदर्शन 638 रन और शुभमन 616 सीजन के टॉप स्कोरर हैं, जबकि बेंगलुरु के भुवनेश्वर 24 विकेट के साथ और गुजरात के रबाड़ा 24 विकेट टॉप विकेट ट्रैकर्स के साथ हैं, और 557 रन के साथ विराट भी ऑरेंज केप की रेस में अभी भी है। तो गुजरात से सिराज और आरसीबी से हेजलवुड सपोर्टिंग गेंदबाजी रोल अभी निभा रहे हैं। और साथ के मैचेस की बात करें तो आज तो क्वालिफायर 1 होने ही वाला है। एलिमिनेटर राउंड जो होगा वो 27 मई को राजस्थान और हैदराबाद के बीच में होगा। क्वालिफायर 2 जो है वो 29 मई को होने वाला है, और फाइनल मैच का मजा हम लेंगे 31 मई को।
1: तो ये थी हमारे आज के प्रोग्राम हाईलाइट, और आईपीएल के बारे में अब सुनते हैं गीत।

0: तो बहुत ही अच्छा सा गाना हमने सुना। और रश्मि, तो जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव के लिए एक साथ प्रयास करने के बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। अपने डेली रूटीन में अगर हम 1% भी बदलाव लाएंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें बदलनी चाहिए, वो आज हम बात कर रहे हैं। छोटी आदतें जो जीवन में लाए बदलाव।
1: बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, उसी तरह से छोटी छोटी आदतों में बदलाव से हम अपने पूरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल रश्मि, तो बहुत सारी बातें हैं रश्मि जो बहुत छोटी छोटी सी हैं, पर उन्हें समझना जरूरी है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें अपने जीवन में भी लाना है, क्योंकि ये सब बातें हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बना सकती है। जैसे कि सबसे पहले और सबसे खास बात रश्मि, आजकल जो है एक मोबाइल
1: जी
0: स्क्रीन टाइम है ना, तो सबसे पहले हमें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, वो हमारे जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव कर सकती है। साथ ही हमको आउटडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए, हर काम के लिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना उसको तय करना चाहिए। साथ ही साथ जल्दी उठना, जल्दी सोना, इस पर भी ध्यान दें, और पॉजिटिव बातों पर फोकस जरूर करना चाहिए।
1: देखिए, आपने जल्दी उठने की बात की ना कामिनी, तो जैसे अगर हम सुबह 6:30 बजे उठते हैं, तो आप अगर ये सोचेंगे ना कि अब कल से तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि आप 6:30 की जगह 6:15 और 6 का नियम अपनाएं और धीरे धीरे करके उसे अपने जीवन में लागू करें। और उसके साथ देखिए, रात को सोने का समय भी आप तभी सही तय कर सकते हैं जब अपने स्क्रीन को छोड़ेंगे। और साथ ही 5 मिनट का नियम आप हमेशा अपनाएं, जैसे किसी भी काम को कल पर टालने से बचने के लिए उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करें, और एक बार शुरू करने के बाद काम करना बस आसान हो जाता
0: है। बिल्कुल सही कहा रश्मि, कि हर काम के लिए रिमाइंडर जरूर सेट करें, और साथ ही साथ जब सुबह उठने की बात हुई तो उस समय आप व्यायाम और योग को शामिल करें, जो कि बहुत जरूरी है। और साथ में हम इन्हीं बातों को साथ में जब लेकर चलते हैं, तब लिखना और पढ़ना, इसे भी अगर हम अपनी आदत बनाएंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखेंगे तो एक रुचि जागेगी और पढ़ेंगे तो नई जानकारी हमें प्राप्त होगी।
1: और बिल्कुल देखिए, और इसके साथ ही आप मल्टीटास्किंग होने से बचें। अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूँ ना कामिनी, मेरे घर में जो है ना वो 4 चूल्हे वाला जो होता है ना गैस, वो है, तो मुझे लगता है कि मैं चारों पर लगातार काम कर लूँ, एक इधर रख दूँ एक उधर रख दूँ, लेकिन उससे कई बार ऐसा होता है कि मुझे नुकसान ही होता है। कई बार दूध उबल जाता है, तो कभी कई बार सब्जी जल जाती है। तो आपको ये है कि मल्टी

0: मल्टीटास्किंग होने से बचना है, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें।
1: रश्मि, जहाँ किचन की बात हुई तो हम यही कहेंगे कि पौष्टिक आहार जरूर लें, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथ नींद जो है वो पूरी लें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें, और नई और अच्छी बातें और आदतें सीखने और बनाएं, जिससे कि आपका जो है व्यक्तित्व है वो निखरेगा। साथ ही हम बड़ों का सम्मान करें, सच बोलें, सबकी मदद करें, स्वच्छता का ख्याल रखें। ये सभी बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, कि जिनसे इन छोटी छोटी आदतों से हम अपने जीवन में बहुत अच्छा सुंदर बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, एक जगह पर आपने मोबाइल की बात की कामिनी, तो देखिए मोबाइल को छोड़ना ज़रूर है लेकिन स्मार्ट बनना है। आप अपनी प्रगति को देखने के लिए हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में हैबिटिफाई और हैबिटिका जैसी एप्स को उपयोग करके अपनी आदतों को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं।
1: तो रश्मि, तो ये वो कुछ इशारे हैं जो जीने के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत जरूरी हैं, और ये जीवन में बहुत ही अच्छा रंग भर देंगे।

0: तो बिल्कुल रश्मि, तो जीने के इशारे हमें भी मिल रहे हैं। और जीना किसे कहते हैं रश्मि? जब हम खुश हों। और हम खुश कब होंगे? कि जब हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हों। और उसके लिए ज़रूरी है योग, व्यायाम, खेल, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और खेलों की जब बात करते हैं तब हम यही कहेंगे कि हम सभी ने बचपन में कुछ ना कुछ भारतीय पारंपरिक खेल ज़रूर खेले हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे भारत के कितने पारंपरिक खेल खेलते हैं या उनके बारे में जानते भी होंगे? दुर्भाग्य से आज के युग में सभी टीवी, मोबाइल और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन सभी से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या बड़े भी इन खेलों को नहीं खेल पाते हैं और इन सभी से दूर भी हो गए हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर, शारीरिक विकास पर, मानसिकता पर पड़ता है, जिसे आज हमें मिटाना है और बच्चों और बड़ों को इसका महत्व एक बार फिर से बताना है।
1: बिल्कुल कामिनी, देखिए आपने पारंपरिक खेलों की बात की तो कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा जो कि हमने अपने बचपन में खेले हैं वो आजकल के बच्चे खेलते हैं, मैं कहूंगी खेलते हैं, लेकिन पता है किस में? मोबाइल में। क्योंकि मोबाइल में भी अब जो है कबड्डी खेला जा सकता है और क्रिकेट भी खेला जा सकता है, लेकिन सब कुछ डिजिटली हो चुका है। जहां हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि छोटी छोटी आदतों को बदलना है, अब छुट्टियां हो चुकी हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चे ये खेल खेलें लेकिन प्ले ग्राउंड में जाकर खेलें। हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ी सी देर मिट्टी में भी जाने के लिए मना करते हैं कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, और हम तो मिट्टी में ही पले बड़े हैं। और साथ ही देखिए स्पेशल आजकल बच्चों को मिट्टी से जुड़ाव के लिए मड कैंप लगाए जाते हैं, और बल्कि हम तो नेचुरल मिट्टी में अपने साथ खेले हैं, हमने वो जो टीले भी बनाए हैं मिट्टी के, और कितना कुछ किया है।
0: बिल्कुल रश्मि, जो ये पारंपरिक खेल है हमारी संस्कृति जो है उसका विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये खेल बिना किसी महंगे उपकरण के स्थानीय स्तर पर खेले जाते हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ भाईचारा और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देते हैं। और ऐसे बहुत से खेल हैं रश्मि, जैसे पच्चीसी, लूडो, सांप सीढ़ी, चिपस, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कितने ऐसे खेल हैं रश्मि जो हमने बचपन में हमारे समय में खेले, जैसे लंगड़ी टांग, कंचा जो खेलते थे
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: पत्थर जी, के उससे सितौलिया जो खेलते हैं, गिल्ली डंडा, ये सभी गेम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, पर इन सबको वापस लाकर हमें बच्चों को इस बारे में अवगत कराना है, बताना है कि किस तरह से ये गेम हम इंडोर और आउटडोर दोनों में खेल सकते हैं। और जब गर्मी और छुट्टियों का समय होता है तब अगर हम इन गेम्स को लेकर बैठे हैं तो सभी परिवार भी इसमें शामिल होता है, जो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, बहुत ही सस्ते में, मतलब कहा जाए कि केवल आपको एक कदम आगे बढ़ाना है कि आपको घर से बाहर निकलना है, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करना है और किसी गार्डन में जाकर इस तरह के खेल खेलने हैं। आप देखिए आजकल जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए रात को 10 बजे जाते हैं ना, क्योंकि टर्फ में जाने लग गए हैं, आजकल खुले मैदान में कोई जाता ही नहीं है, बल्कि वहां पर पैसा देकर हम खेलते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास अगर कोई मैदान खाली है तो हम वहां जाकर वो गेम खेल लें।
0: बिल्कुल रश्मि, और इन खेलों से आपका जो फिटनेस है वो अच्छा होएगा, मानसिक विकास तो बढ़ेगा ही, एकाग्रता आप में आएगी, आपसी प्रेम होएगा, सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा, टीम भावना जागृत होएगी हमारे अंदर, सांस्कृतिक जुड़ाव भी होएगा, क्योंकि जब हम इस तरह के गेम्स अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं तब हमारे साथ जितने जने होते हैं उनसे हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातें होती है, जानना पहचानना होता है, और सबसे बड़ी बात जो स्क्रीन टाइम है उसमें कमी आएगी, जिससे कि आपका जीवन बच्चों

0: की लाइफ, बच्चों की फिटनेस, बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब कुछ
1: बिल्कुल, मतलब एक पंथ दो काज है, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और आप डिजिटल रूप से थोड़ा सा मोबाइल से दूर भी हो रहे हैं।
0: तो आइए हम भी ये खुशियाँ बटोर लें।

0: तो रश्मि, तो ये कार्यक्रम हम यूं ही आगे जारी रखेंगे। फिलहाल सवेरे के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर

0: अजमेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आमजन से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
0: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और

0: आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
1: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत SC ST लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों के नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर प्वाइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूँ कामिनी और मेरे साथ
3: और मैं हूँ दशमी। तो एक खूबसूरत से गीत के साथ फिर से शुरुआत करते हैं।

0: ए महकी हवा मुझे ले चल वहाँ। सचमुच जहाँ पर इस तरह की हवाएं होती हैं वहाँ पर ही जाने का मन होता है। और अभी का जो ये समय है जब कहा जाता है कि समर है,
1: बिल्कुल, और छुट्टियाँ हो चुकी हैं और हमारे बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके।
0: तो ऐसे में चाहिए कि कोई ऐसी जगह हम बच्चों को ले चलें या ऐसी जगह हम बच्चों को ले जाएं जहाँ पर वो अपना टैलेंट, अपना शौक, अपनी खुशी सभी कुछ पा सके।
1: जी,
0: तो इसीलिए हम अब एक जानकारी, एक बातचीत सुन रहे हैं डॉक्टर लाइक हुसैन से, डायरेक्टर भारतीय लोक कला मंडल, जो कि समर कैंप के बारे में आप सभी को बताएंगे।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर लाइक हुसैन, डायरेक्टर भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना आदिम एवं लोक कलाओं के उत्थान, विकास और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। अपने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय लोक कला मंडल द्वारा समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में हर वर्ष समर कैंप भी आयोजित किया जाता है। इस वर्ष समर कैंप का आयोजन 15 मई से 15 जून के मध्य किया जा रहा है, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वादन, कठपुतली, इसका प्रशिक्षण सुबह 9 से 11 बजे के मध्य दिया जा रहा है। इसके अलावा सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में 6 मई से 40 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इन सभी कार्यशाला में जो कुछ भी बच्चे सीखेंगे उन सब की प्रस्तुति

0: कार्यशाला के समापन अवसर पर की जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे समर कैंप जो हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, ये भावी पीढ़ी को हमारी कलाओं के विकास के लिए या उन्हें इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से की जा रही है। मुझे लगता है हमारी भावी पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन इस सब का लाभ उठाएगी और हमारी कलाओं को आगे पहुंचाएगी। धन्यवाद।
1: तो रश्मि, डॉक्टर लाइक हुसैन ने समर कैंप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, डायरेक्टर भारतीय लोक कला मंडल।
2: बिल्कुल, देखिए, और जहाँ तक हम अपनी छुट्टियों को सही जगह पर यूटिलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी ये जो छुट्टियों में है, छुट्टियाँ जो है इसमें तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है कामिनी। जहाँ पर हमने आज बात की कि हम अपनी थोड़ी सी छोटी छोटी आदतों को बदलें, थोड़ा सा हम पारंपरिक खेलों की तरफ जाएं, वहीं आज हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस में वेब सीरीज़ का युवाओं पर प्रभाव। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं।
1: सही कहा रश्मि, जो कि अब आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं वेब सीरीज़ की और इसके प्रभावों की, प्रभाव कहा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज हो सकती है। और जहां तक वेब सीरीज की बात है, ये एक ऐसा अट्रैक्शन और एडिक्शन है जो कि अब हमें कभी और कहीं भी नहीं छोड़ रहा है। जब तक कोई चीज देखना शुरू ना हो जाए और वो जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जो ये एडिक्शन है उसे कम करना बेहद जरूरी है।
2: देखिए, एडिक्शन हो जाए तो वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक के बाद एक लूप सा चलता रहता है और हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जो हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, वो मोबाइल, इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग से युवाओं को बहुत सारी वेब सीरीज देखने को मिलती है और इसका प्रभाव पॉजिटिव ये पड़ता है कि ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि होती है, क्योंकि इतिहास, विज्ञान, अपराध, जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर जो है जानकारी युवाओं को मिलती है। साथ ही भाषा और संचार कौशल का भी विकास होता है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं की वेब सीरीज देखने से नई भाषाओं को सीखने और संवाद शैली सुधारने में भी सहायता मिलती है।
1: और जहां हम नेगेटिव बातों की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हमारे अंदर एक हिंसा पनप जाती है कि जब हम इस तरह की कुछ चीजें देखते हैं तो उससे उन चीजों को हम अपने अंदर ले लेते हैं और हिंसक प्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उजागर हो जाती है।
2: एक आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी वेब सीरीज देख रहे होते हैं, लगातार जब हम देखते हैं ना कामिनी, तो हम थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। जैसे वो मोबाइल हमसे दूर होता है तो हमें थोड़ा सा पता नहीं अनइजीनेस सा लगना लगता है।
1: जिस तरह की वेब सीरीज हम देखें, अगर कोई अश्लील हो तो हम उस तरह की बात दिमाग में चलेगी। अगर कोई आपराधिक हो तो हमें अपराध जो होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं सोच विचार में पड़ जाते हैं, उससे अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। ये सब चीजें ना हो वो बहुत जरूरी है। साथ ही भाषा जो है उसमें बहुत गिरावट आती जा रही है, शिष्टाचार में गिरावट आती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाषा पर कोई कंट्रोल नहीं है, हर तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा समय, उसकी बर्बादी इसमें बहुत होती है। और हमें नींद की तो चिंता ही नहीं रहती है कि भले पूरी पूरी रात भी हो जाए, पूरा दिन भी निकल जाए, जब तक हम जो कंटेंट देख रहे हैं वो खत्म नहीं होता तब तक हमारी नींद भी उड़ी रहती है। इससे क्या होता है रश्मित, चिंता बढ़ती है, तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और हमें फिर से उस समय लौटना चाहिए था कि जब हम रविवार के दिन रामायण महाभारत का इंतजार किया करते
2: बिल्कुल
1: थे।
2: क्या बात कही कामिनी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मतलब बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो जरूरत यह है कि हम अपने विवेकपूर्ण ढंग से ये सोचे कि हमें कौन सा कंटेंट देखना है और अपने टाइम को और अपने मूल्यों का संतुलन इसमें बनाकर रखें।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि, तो ये सभी बहुत जरूरी है और इन सब में साथ होना चाहिए अपनों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। इन सभी के साथ अगर हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे, रखेंगे, हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी डिस्कशन होगा, तभी जा कर के इन सारी चीज़ों के प्रभाव को हमारी ज़िंदगी से, इन युवाओं की ज़िंदगी से हम कम कर सकेंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो चलिए, हमें भी कोई ना कोई मिलेगा कि जिसे हम समझाएं या जिसे हम समझें।
2: जी।

0: तो रश्मित प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक जो खास जो बात है उस पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है जहाँ ये बढ़ती आबादी है और घटता जो ये हमारा पेड़ पौधे हैं, ये हरित जो हमारी जो क्रांति होती है उसके विघटन के बारे में हम बात करेंगे, अर्बन हीट लैंड इफेक्ट पर।
1: बिल्कुल, देखिए नौतपा बिल्कुल तरह से शुरू हो चुका है, गर्मी बहुत चरम पर है और ऐसे में हम बात करते हैं कि शहरों का तापमान जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण ये होता है कि इमारतें बहुत बढ़ रही हैं, वाहन और उद्योग और हरित क्षेत्रों की कमी हो रही है। और देखिए इसके लिए हम ये जरूर कर सकते हैं कि सबसे अच्छा और सरल और सस्ता उपाय है पेड़ लगाना। उसके साथ साथ हम कूल रूफ का उपयोग कर सकते हैं, भवनों की छतों पर हल्के रंग या की जो सामग्री है वो लगाएं ताकि गर्मी कम अवशोषित हो सके। इसी के साथ साथ हम जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं जिसमें तालाब, झील, फव्वारों का संरक्षण हो सकता है। सबसे जरूरी है पानी की बचत करना।
0: बिल्कुल सही कहा रश्मित, ये सब चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो ये धरती है इसे हमें बचाना है। और बचाना कैसे है, ये बढ़ता तापमान, बढ़ता प्रदूषण इसे कम करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, स्वच्छता का ख्याल रखना है। ये सभी बातें जब होंगी तब जब ये तेजी से बढ़ रही जो सबसे ज्यादा मतलब इमारतों का बनना, इमारतें बनने की वजह से जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से ये हीट इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए हम एयर कंडीशन का भी तो यूज करते हैं, उससे जो निकलती है गैस उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अब इन सब चीजों के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप जो आपके वाहन है उसमें भी आप आजकल ईवी जो है इलेक्ट्रिक वाहन बहुत चल रहे हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम सड़कों और फुटपाथों की बात करें तो वहां पर कूल पेवमेंट लगाए जाने चाहिए ताकि वो गर्मी को कम से कम सूखे।
0: बिल्कुल रश्मित, तो ये है अर्बन हीट लैंड इफेक्ट के बारे में बातचीत। शहरी जो ताप जो है, जो तापमान बढ़ता जा रहा है।

0: भूमि के द्वारा उसे हम कम करें, और कम करने में हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि साथ ज़रूरी है और स्नेह और प्यार भी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, तो चलिए इसी कोट के साथ आज के इस प्रोग्राम से अब लेते हैं इजाज़त। आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के साथ मैं थी रश्मि, और मेरे साथ
0: थी मैं थी कामिनी।
1: तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे। नमस्कार, उदयपुर का ये अंक आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनवाएं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम

0: प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
1: जी।
0: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
1: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
1: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
1: जी।
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों

0: के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
4: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
5: We will hum
6: and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
4: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्य

0: कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: जय जेरापुर, जय भारत।
4: जय जेरापुर, जय भारत।
1: राजा जोरावर सिंह।
5: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
6: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
5: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
6: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
7: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
7: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
7: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
7: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
7: जी महाराज।
5: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
9: जी।
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में कामयाब न हो।

0: पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक

0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
3: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
3: जो हुकुम सरकार।

0: John Allen! What ho? Tum charu taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
7: Yeah.
1: अप्पा साहब,

0: अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना। प्रायोजक NCERT, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले बॉर्डर फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में बॉर्डर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक, इन सभी की मिलीजुली आवाज़ों में राम जाने फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
8: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
8: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: आइए अब सुनते हैं करण अर्जुन फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की।

0: और प्यार हो गया इस फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू को, फिल्म दिल जले में।
1: ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: दान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

गुलाम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम को फिल्म ताल में।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज राग हैं राग ललित।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी हाँ? आपके नाम।
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
8: बन गया बजट।
7: हाँ 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना पिछले महीने तो ली थी।
8: एक और
7: नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
8: बढ़िया जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत में राग ललित। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11:30 हो चुके हैं और अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत में कुछ चंद गजलें। पहली गजल मेहंदी हसन की आवाज़ में।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सुगम संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई गजल।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुनी मेहंदी गज़ल की गाई गज़ल, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली आवाज़ आतिफ असलम की, फिल्म का नाम रुस्तम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, एक और प्यारा संगीत सुनाते हैं आपको। स्वानंद किरकिरे की आवाज़ इसमें है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म का ये गीत है।

0: स्कैन करके यूपीआई से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आप यहाँ आरजू एकता के साथ एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। एजेंट नो फिल्म का ये गीत है, अरिजीत सिंह की आवाज इसमें है, सुनते हैं।

0: स्वरंत के किरकिरे की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना। आइए सुनते एक संदेश और उसके बाद फिर से लिए चलेंगे आपको फिल्मी गीतों की ओर।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी

एजेंट विनोद फिल्म से बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना। ये आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत कबीर सिंह फिल्म से, सचेत टंडन की आवाज़ इसमें है।

कबीर सिंह की आवाज़, कबीर सिंह फिल्म से ये की, तभी आपने सुना, बड़ी ही प्यारी आवाज़ थी सचिन टंडन की। आइए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत, जीनियस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़।

सुर निगम श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाज़ों में प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, जनट्टू फिल्म का ये गीत। शफ़ाकत अमानत अली साहब की आवाज़ इसमें है।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का भी ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप थे आरजे एकता के साथ, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचार होंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और

0: और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियो वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सहेलिया री बाड़ी।

0: राम राम धरना भैसा, राम राम।
1: राम राम गायत्री भैसा, राम राम।
0: सहेलियरी बाड़ी कार्यक्रम होनवा वाली सगली बेना ने आपानो
1: राम राम सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टेम व्यो किसान आपने बेना रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यहा सा और आपने बेना भी हरदन नित नवादन नवी नवी जानकारियां होने फायदो लेवे और लाभ भी लेवे और आपा भी हरदन नवी नवी जानकारियां लाया। तो धारणा भाई साहब विचार वाली बात में आज आप कई लेन आया हो सा?
1: तो देखो गायत्री भाई साहब, जो आपनी बेना साहब इंतजार कर रही है आपने कार्यक्रम रो, तो आज देखो सब पहली जो है विचार वाली बात में जानकारी लाया कि ग्रामीण उद्यमिताओं आपने जो महिला बहना है वे सशक्तिकरण किसरे कर सके और समाज में और परिवार में आगे किसरे बढ़ सके। तो देखो गायत्री भाई साहब, ग्रामीण उद्यमिता की अगर बात करा और आपनी महिला की बात करा तो जटे वे सशक्त वेदी है, आपस में बहुत बहुत ही गहरो संबंध है। यो बड़ी आबादी वाला जो आपने गांव में वे रहवे तो वटे ग्रामीण महिला रो आर्थिक रूप आत्मनिर्भर वनो पूरा समाज रे लिए वणी रे विकास रे लिए बहुत ही जरूरी है सा।
0: घनी हाची बात की धारणा भाई सा कि जत्रे एक आपाने जो ग्रामीण बेना है वे उद्यमी जदि वनेगा, जदि वे न केवल आपाने परिवार ने आर्थिक संबल भी देगा बल्कि समाज ने भी रूढ़िवादी बेड़ियाओं ने तोड़ेगा और अगर आपाने बेना उद्यम चलाएगा आगे बढ़ेगा तो यो समाज भी उन्नति करेगा और परिवार भी उन्नति करेगा सा।
1: बिल्कुल हाची बात की गायत्री भाई सा, जटे आप ही बात कर रहा है कि महिला उद्यमिता री तो सब पहली जो बात आवे वह आवे आर्थिक स्वतंत्रता री। अगर ग्रामीण महिला बहना अपने घर स्वयं शुरुआत करेगा तो देखो दो पैसा वनारे हाथे आएगा। ग्रामीण उद्यमिता में देखो सब पहली आप ही बताऊँ अपनी बहना ने कि अपने उद्यमी जो महिला है वे खुद री कमाई करवा रो जरियो देवे वना ने। देखो पैसा रे लिए परिवार जो पुरुष सदस्य है वना पे वे निर्भर नहीं रहे। केवरी बात यह है कि वे खुद कमावा लाग जावे तो वे देखो आर्थिक सशक्त भी जावे और यदि वे अपना खुदरा जो फैसला है जिनमें कई लेनो है कई देनो है तो अणि रूप वे स्वतंत्र भी जावे और वे खुदरा फैसला खुद ले पावे सा।
0: घनी अच्छी बात है और यदि अपनी बहना सफल व्यवसाय चलावे तो समाज में वनारो सम्मान भी बढ़े है, वे केवल घर रा कामकाज तक सीमित नहीं रहे जबकि अपना गांव रो विकास भी करे है, निर्णय लेवारी जो प्रक्रिया है वन में भी वे शामिल वेवा लागे और वनारो जो सामाजिक स्तर है वन में भी काफी सुधार आवे सा।
1: बिल्कुल सा, समाज में सुधार आवे और देखो स्थानीय रोजगार रो सृजन भी करे क्योंकि देखो एक महिला अगर बहुत सारी चीजें मन आवे तो वह न केवल अपने रोजगार ने ढूंढे बल्कि गाँव री जो भी अन्य अपने महिला बहना है या वनारी खुदरी टाबरियाँ है वना ने भी यो काम अगर देगा तो देखो हस्तशिल्प रो जो है वो आगे बढ़ेगा। डेयरी फार्मिंग है जिनमें अपनी जो गांवरी बहना है आगे बढ़ेगा और देखो आपने जो गाँव री बहना है वना ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आवे गायत्री वैसा कि वे हाथ रो हुनर वना ने आवे जड़ में देखो सिलाई आएगी, कढ़ाई आएगी, बुनाई आएगी, अचार पापड़ अबार। देखो गर्मी रा टाइम चल रहा है, खूब सारी केरियाँ आ रही है तो आपने जो बहना है वे अचार बनावे, पापड़ बनावे, आम रा पापड़ बनावे। दूसरी महिला ने भी अगर वना ने नहीं आई रो है तो वना ने हिकावे, वना ने

0: आत्मनिर्भर बढ़ावे ताकि वे खुद पे पैरा पे खड़ी भी सके और घरों ये चीजा जो है वे आगे बढ़ाई सके ऐसा।
1: या तो घनी हाची बात है कि अपने ये जो बहना है वे खुद रो उद्यम चलाएं, खुद रो व्यवसाय चलाएं, आगे बढ़े हैं और दूसरी बहना ने भी आत्मनिर्भर बनावे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो बहना है वे मुख्य रूप लघु उद्योग, जिस तरह के आप बनो बताए कि कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, अचार पापड़ अनारो जो भी लघु उद्योग है वनमें खुद आगे बढ़े है, स्वयं सहायता समूह भी चलावे है, खेती बाड़ी आधारित व्यवसाय जिस तरह अगर अपनी बहना जो है वे पशुपालन कर रही है तो वे डेयरी फार्मिंग भी कर सके है, लारे लारे अपने बागवानी भी कर सके। तो केवारो मतलब यो है कि खेती बाड़ी का जो व्यवसाय है वे भी अपनी बहना चलाई सके है, कुटीर उद्योगों रे माध्यमों अपनी पहचान भी अपनी बहना बनी रही है। आप देखा कि जटारी जो भी प्रसिद्ध चीजा है, हस्तशिल्प है, कला है, अणा ने भी अपनी बहना जो है वे आगे ले रही है और अपनी खुदरी भी पहचान बने रही है और अणी में सरकार भी अपनी बेनारी मदद कर रही है मुद्रा योजना में और अपने स्टैंड अप इंडिया जैसी जो पहल है वनारे जरिए भी अपनी बेना ने बढ़ावो मिल रही है। तो अपनी बेना जो है अगर ग्रामीण उद्यमिताओं आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण रिजटे आप बात कर रहे हैं, अपनी बेना जो है वे खुद आर्थिक स्वतंत्र वे रही है, सामाजिक रूप में वना में सुधार आई रो है और वे खुद रा जो रोजगार है वनारो सृजन कर रही है तो ये अपने देश के वास्ते अपने समाज के वास्ते बहुत ही गौरवरी बात वेगा सा।
0: बिल्कुल सा, अंडे वास्ते देखो जो अपने विभिन्न सरकारी जो योजनाएं हैं वे भी अपने जो महिला बहना है, जो उद्यमी महिला बहना है वनारी सहायता करे। गायत्री भाई साहब वन में देखो प्रमुख रूप में कही है मुद्रा लोन योजना है, बिना गारंटी के 10 लाख तक रो लोन जो है वो अपनी महिला बहना ने मिलेगा और देखो वे अपने कुटीर उद्योग ने चालू कर सके घरों। बहुत सारी ऐसी स्वयं सहायता समूह है जिनमें आजीविका मिशन रे माध्यमों अपनी महिला ने समूह जोड़ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और भी कई चीज वे हिकनो चाह रही है जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन किसरे करना है, बकरी पालन है, जैविक खेती किसरे करनी है, मशरूम रो उत्पादन किसरे करना है, अचार पापड़ बनानो, मसाला रो निर्माण करनो, खेती और खाद्य प्रसंस्करण ये जो चीज़ें हैं अणमे मुख्य रूप में अपने यो इस उद्देश्य है सरकारी योजनाओं के अपने जो ग्रामीण महिला बहना है वनाने आगे आवारो अवसर मिले और वे स्वरोजगार करे सा।
1: बिल्कुल सा, तो ग्रामीण उद्यमिताओं अपनी बहनारो सशक्तिकरण वे रो है सा। तो या तो घनी हाँची जानकारी दीदी और अभी आपको तो अपनी बहनारो मनोरंजन करावा और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत
0: हुणा सा।

0: તો ધાણના બૈસા ઘણું હી મનભાવન રાજસ્થાની ગીત આપણી બેનાને હુણાયો સા
1: હા સા
0: ઓર લારે લારે સંદેશ ભી હુણાયા કાર્યક્રમને આગે બઢાવવા ઓર કાર્યક્રમ મેં આજ આપણે સ્ટુડિયો મેં પધાર્યા લખા હૈ ડાક્ટર બનવારી પારીખ સર ઓર વણારી આપણી બેનાને કહાની હુણાવવા કે નિષ્પાપ પ્રેમ રી પૂંજે તો હુણા બૈસા યા કહાની
1: હુણા સા
2: મેરી કહાની કા શીર્ષક હૈ નિષ્પાપ પ્રેમ કી પૂંજી। रेणु मेरी अनुजा की सहपाठी थी। एमए करने के लिए जब वह इस शहर में आई तब मैं ये नहीं जानता था कि कोई लड़की अनायास ही पीएचडी शोधरत मेरे इस वैरागी जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। पहला दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है। छोटी उसे अपने साथ हमारे घर में रहने को ले आई। चाय नाश्ते के समय मम्मी पापा को भी वह बहुत भाई, परंतु अतिरिक्त कमरा नहीं होने से अवकाश को साथ रहने के वादे के साथ पड़ोस में किराए से रहने लगी। उसमें न तो कोई दिखावा था और न ही अधिक वाचालता, किंतु चेहरे पर आकर्षक गांभीर्य था, जैसे जमाने भर की चमक दमक के खोखलेपन से वह वाकिफ हो। उसी दिन बिना विचार किए ही मैं उसको अपना दिल दे बैठा। शने शने मैं अनायास ही रेणु के जैसे बनने लगा। छुट्टी के दिन की मैं बाहर जो था, इससे पहली रात बमुश्किल आँख लगती। सुबह से ही जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से बनता संवरता, उसकी पसंद से मेल खाती सीधी शालीन पोशाक पहनता और प्रतीक्षा करता रहता छोटी के पास उसके आने की। अपनी स्टडी टेबल पर स्वाध्याय करते करते जैसे रेणु की पदचाप सुनता मैं असहज हो जाता। हमारा अध्ययन विषय एक सा ही होने से छोटी की तरह वह भी कभी कभी मेरे से पढ़ने लगती। उसकी जिज्ञासाओं व प्रश्नों का समाधान करते करते मैं उसे लगातार निहारता। सुर्ख लाल हुए कपोलों को लिए यदा कदा अशिष्ट शिष्य की भांति वह यकायक उठकर माँ के करीब जा बैठती। तब रेणु मन संग मेरा मन चला जाता, मर्यादा उल्लंघन के भय से तन किसी अन्य कार्य में संलग्न हो जाता। आभास होता मैं स्वयं के अनुसार नहीं रेणु के अनुसार जी रहा हूँ। एक काल्पनिक बंधन जैसे हमें बांधे जा रहा था। कदाचित इसी कारण ये प्रेम कभी भार स्वरूप नहीं लगा। इसमें तो प्रतीक्षा और चाहत थी, इच्छा और मांग नहीं थी। रेणु ने मुझे कभी स्पष्ट प्रेम संकेत नहीं दिए, पर उसके अध्ययन संबंधी या अन्य प्रत्येक सवाल में आत्मीयता महसूस होती थी। कभी कभी नोट्स के बहाने छोटी की गैर मौजूदगी में भी आ जाती। एक बार मेरी अनुपस्थिति में आई रेणु माँ के पास बैठकर बतियाती हुई रह रहकर दरवाजे की ओर देख रही थी। ऐसे में हंसते हुए माँ ने कहा था, आज वीरे सेमिनार है, लेट आवे लो। तब झेपती हुई वह बोली थी, नहीं आंटी, मैं तो वैसे ही देख रही थी। उस दिन मेरी माँ ने भी रेणु की सुंदर सुशील छवि, उसकी सादगीपूर्ण वेशभूषा पर गौर किया था। संभवतः विवाह योग्य होते पुत्र के लिए इस सुयोग्य अंगना का विचार भी माँ के मानस में कोंधा था। तभी तो वर्ग भेद रहते भी मंशा पूर्ण होने के लिए माँ का उठकर पूजा स्थल के समक्ष शीश नवाना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। ये ज्ञात होने पर तो मैं रेणु को साधिकार अपनी समझने लगा था। मेरे पढ़ाई से तनिक विश्राम पाते ही आप ख्यालों में आखड़ी होती थी। जब भी

अपने गांव जाकर लौटती, वहां की प्रसिद्ध केसर बर्फी देने जरूर आती। तब माँ वह छोटी से वार्तालाप करती हुई की नज़रें मुझे ढूंढती रहती, किंतु हमारी आंखें चार होते ही मुंह फेर लेती। कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी या कैंटीन में छोटी संग रेणु अक्सर मिलती, थोड़ा गपशप भी होता। कभी कभार इन स्थलों पर अकेली रेणु से भी भेंट होती। हम दोनों आपस में बोलते कम, लेकिन वे पल गूंगे के गुड़ की भांति अनिवर्चनीय सुखदाई होते। और ऐसे ही एक दिन साइकिलों पर आगे पीछे लौटते हम दोनों को रोककर हमारी कॉलेज के समीपस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रसिद्ध स्कॉलर तेज तर्रार पोखर भाई ने जब रेणु को डांटते हुए मेरे लिए कहा था, ए हमारे इंसाफ का ध्यान रखा कर, तब इस आकस्मिक वाक्य से परेशान हुए मेरे ओर देखते हुए मुस्कुराकर रेणु का वहाँ से निकल जाना साफ दिल के पोखर को भी मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था। बस इसी प्रकार शांत प्रवाहमान सरिता की तरह न जाने कब 2 साल बीत गए। न इधर से न उधर से कोई उच्छृंखलता हुई। संभवतः हम दोनों जानते थे कि जीवन साथी का रिश्ता नहीं हो सकेगा, और एक रोज़ तो सब मटियामेल हो ही गया जब रेणु ने अपनी शादी का कार्ड थमाते हुए आशुपूरित नेत्रों से मुंह फेरते हुए कहा था, समय कम होने से मैं घर नहीं आ पाऊँगी, तुम आओगे ना। तभी तेज चलते बवंडर में उड़ना चाह रहे उस कार्ड को थामते हुए रूंधे गले से मैंने बधाई देते हुए बिलखते बालक की तरह कहा था, हाँ हाँ छोटी के साथ जरूर हाजिर रहूँगा। ये सब देख सुन अपनी प्रतीक्षा कर रही कैब में बैठती हुई रेणु के नेत्रों के गंग जमन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाती रेणु के निर्निमेश नयन एवं कॉलेज लॉन में जड़ होकर खड़े मेरे अपलक आँखें एक दूजे को अनवरत तब तक निहारते रहे जब तक वह कैब ओझल नहीं हो गई। घर पर कार्ड देखकर माँ व छोटी की भी रुलाई फूट पड़ी। उस दिन मुझे वह परिजनों को समझ में आया कि 6 महीने पहले एक दिन रेणु के साथ आए उसके पिताजी प्रोफेसर विद्यासागर जलपान के समय बातों ही बातों में हमारी जाति जानकर जरूरी काम याद आने का कहते हुए यकायक उठ खड़े हुए थे और बेटी का हाथ पकड़कर चलते बने थे। और हाँ, संभवतः उसी दिन मिली उनकी वर्जना से ही समझदार रेणु ने भी इधर का मेल मिलाप कम कर दिया था। तब से उसके चेहरे पर छाई उदासी व निर्लिप्तता का अर्थ आज हम सबकी समझ में आ गया था। भराए गले से ये कहती हुई माँ रसोई में चली गई थी। बावली छोरी एकली घुटती रही, बापूरे फैसले पर आपने केवती तो मनरो बोझ नामे खड़को हो। तो मुझे लगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में उनकी प्रेमिका सविता के समक्ष भी कदाचित ऐसे ही हालात बने होंगे। खैर, अंततः हम दोनों को हमारे मनों ने समझाया कि कुछ संबंध मिलने के लिए नहीं हुआ करते। कुछ महीनों बाद मेरा भी विवाह हो गया। तारीखों की तरह जीवन आगे बढ़ता गया, चहुं और नई दुनिया बस गई थी, परंतु फिर भी स्मृतियों की कुछ रेखाएं समय की आंधी कहाँ मिटा पाती है। 2 दशक पश्चात एक कार्यक्रम में हम दोनों फिर मिले। संसार के खट्टे मीठे अनुभवों से पके दोनों थोड़ी सी देर तो शांत रहे, फिर जोर से हंसे। हमने सारी यादें ताज़ा की, वो अवकाश के दिन, वो अध्ययन अध्यापन, वो नोट्स लेने व केसर बर्फी देने के बहाने रेणु का हमारे घर आना, वो लाइब्रेरी या कैंटीन में मिलना, पोखर भाई का रेणु को दिया फरमान आदि आदि। सालों बाद जब मैं उन लम्हों को जेहन में लाता हूँ तो हंसी आती है। वो किसी को बिना बताए चुपचाप प्रतीक्षा करना, देखते ही बाग बाग हो जाना इत्यादि, जैसे इस जीवन की निष्पाप पूंजी बन गए हैं। अब जाति धर्म काल नियति से कोई गिला शिकवा नहीं। समझ में आया अपने मन कछु और है, विदना के कछु और। पर हाँ, निश्चय रेणु मेरे जीवन की एक किताब का

0: वह पाठ है जो चाहे पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ किंतु अपूर्ण भी कहाँ रहा। जी हाँ, इस प्रकार के रिश्ते गंतव्य नहीं होते, वे तो जीवन के सफर को सुहाना बनाते हैं। जय हिंद।
1: तो देखो गायत्री भाई सा, यह हुई आपकी कहानी निष्पाप प्रेम की पूंजी डॉक्टर बनवारी पारिकू। और अब देखो कार्यक्रम में आया हाँ जानकारी लाला रे गीत संगीत आड़ी भी चला सा, तो हुना यो गीत।
2: हाँ सर।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो धारणा भाई सा देखो, घणो तावड़ो पड़ रहे हो ना पानी बेना ने, तावड़ो धीमो पड़ जा। यो बढ़िया सो राजस्थानी गीत भी हुनाया सा।
6: हाँ सा।
5: और लारे लारे संदेश भी हुनाया। अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बेना ने जानकारी करावा कि या जो ई मित्र री जो सेवा है और या सुगम सेवा है, वह अपनी बेना रे वास्ते और आम नागरिक रे वास्ते किस तरह बढ़िया वे सके है, लाभप्रद वे सके है। तो अपने जो सरकार है वे अपने नागरिक रे वास्ते सरकारी सेवा आसानी उपलब्ध करावा रे वास्ते डिजिटल क्रांति रो सहारो लीधो है। और आनी दिशा में ने ई मित्र और सुगम पोर्टल, ये दो बेहद जो महत्वपूर्ण मील रा पत्थर जो साबित वे रहा है, अणाऊ अपना जो आम नागरिक है वणा ने नरिहारो लाभ मिल रो है, नरिहारी जानकारियां मिल रही है और ये अपने वास्ते बहुत ही लाभप्रद है सा।
6: बिल्कुल गायत्री भाई सा, और अणा सेवा रो जो मुख्य उद्देश्य अगर अपने बेना ने बतावा तो यो है कि शासन में पारदर्शिता लाणो और जनता ने सरकारी दफ्तर का चक्कर काटवा मुक्ति दिलाणो है। अंडे माध्यम देखो सबू पहली आप ही बतावा कि ई मित्र सेवा अणी मैंने अंडेरी शुरुआत कार्य प्रणाली और नागरिका ने मिलवा वालों जो लाभ है वंडी पूरी जानकारी करावे। सुगम सेवाएं में देखो शिकायत निवारण वेवे और अंडी कार्य क्षमता भी अटे देखी जावे। दोया में अंतर अगर बात करें तो दोया में सेवा मिलने राजस्थान के नागरिका ने जीवन आसान बनावरो यो मुख्य उद्देश्य अणि में दिखे ऐसा।
5: और कसी कसी प्रमुख ई मित्र सेवा है वनारी बात करा, अणि में ने प्रमाण पत्र जो है जिस तरह की मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र, ये जो सेवा है या ई मित्र रे द्वारा ले सका सा। और अगर कसा भी दस्तावेज चाहे जन आधार कार्ड वो, नामांकन अपडेट वो, डिजिटल राशन कार्ड वो और ई आधार है डाउनलोड करना, अणा सेवा ने आपा आम नागरिक अणो सेवा ले सका सा।
6: बिल्कुल गायत्री भाई सा, और ई मित्र सेवा में आगे देखो और बतावा अपनी बहना ने कि बिल भुगतान जन में देखो बिजली रो बिल आई गयो, पानी रो बिल आई गयो, मोबाइल रिचार्ज और ब्रॉडबैंड जो जनी रे घर में लाग रहे हो वंडी बिल री भुगतान री पूरी जानकारी है। और शिक्षा व रोजगारी अगर बात करें तो सरकारी नौकरियां जैसे कि RPSC रीट रे कार्य जो फॉर्म भरना पड़े, और देखो स्कूल कॉलेज री फीस, छात्रवृत्ति आवेदन, ये सब भी चीज़

0: तो धारणा भाई से आप यारों सो राजस्थानी गीत अपनी बेना ने हुनाए सा अबे जानकारी करावा कि खेती बाड़ी में ने कई कई आधुनिकता है, क्योंकि आपानो जो यो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, जटे आपा सदियों खेती पारंपरिक तौर तरीकों करता आया लगा हाँ, और बदलती जलवायु घटता प्राकृतिक संसाधन और तेजियों बढ़ती जो जनसंख्या है वणारी खाद्य आवश्यकता ने पूरा करवाने वास्ते आपाने जो कृषि क्षेत्र रो आधुनिक वेणो अनिवार्य वे चुके हो सर।
1: बिल्कुल सर, और खेती बाड़ी में जो भी अपनी ग्रामीण जो महिला बिना काम करे वन में आधुनिकता की अगर बात करा तो देखो गायत्री भाई सर, खेती बाड़ी रा कार्य में आधुनिकता रो अर्थ केवल ट्रैक्टर रो उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि अणमें उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, डिजिटल तकनीक, वैज्ञानिक प्रबंधन समावेश है। और यो बदलाव नहीं केवल उत्पादकता बढ़ावा में सहायक है, बल्कि अपने जो किसान बहना है, किसान भाई है, उन्हें आय भी दुगुनी करे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवारो एक मुख्य आधार है यो कृषि कार्य में आधुनिकता।
0: उन्नत कृषि उपकरण और यंत्रीकरण पारंपरिक खेती में ने हल बेल मानव श्रम पे बहुत ज़्यादा निर्भरता ही जन्मे समय और लागत दो ही बहुत ज़्यादा लगती है। और आज आधुनिक कृषि उपकरण जिस तरह के कंबाइन हार्वेस्टर है, लेजर लैंड लेवरल है, हैप्पी सीडर है और आधुनिक कल्टीवेटर्स जो है, ये खेती बाड़ी का काम जो है बहुत आसान कर दीदा है और जल्दी भी कर दीदा। अंडे अलावा जो ड्रोन री तकनीक है, अंडे आगमन एक क्रांतिकारी कदम उठ्यो है और ड्रोन री मदद खेता में ने पोषक तत्व और कीटनाशकारो छिड़काव कम समय में वनाई करनी।

0: तो देखो गायत्री भाई साहब प्यारा सो गीत हुनियो। और अब देखो गर्मी रो टाइम चल रहे हो तो आप ही अपने किसान भाई बहना ने यो इस कहंगा कि देखो जो भी खेती बाड़ी में अगर आपने बहना काम भी कर रही है तो देखो पूरो आपने जापतो रखनो है, गर्मी रो ध्यान रखनो है। और देखो छाछ रो सेवन जो है वो अगर आपने बहना करेगा तो हमारे पेट में भी ठंडक रहेगा और देखो गर्मी में लू भी नहीं लगेगा सा।
1: बिल्कुल सा हांजे परबाते दन्ने जत्र भी टेम है छाछ रो सेवन करनो छावे। अपने टाबर ने भी पिलानी है, खुद भी पीनी है और परिवार का सदस्य ने भी पानी है। और अबे जानकारी तो नरी हरी कराई है और करावारो मन तो घणो है पर घड़ी रे आड़ी नाला तो कार्यक्रम विदारो टेम वे गयो है सा। तो चाला सा
0: राम राम सा।

सहेलियारी बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के बजकर 45 मिनट हो चुके हैं, आइए आप आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों में बेहतरीन नगमे। पहली आवाज रेखा भारद्वाज और जावेद अली साहब की है, रावण फिल्म से ये गीत है।

0: रावण फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का और आप हैं आरजे एकता के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं एक संदेश और उसके बाद फिर से लिए चलेंगे फिल्मी गीतों की ओर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Work from home? Hi.

0: से क्लिप में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रेस फिल्म से गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आप आरजू एकता के साथ इस तपतपाती गर्मी में आप बड़े ही बेहतरीन नगमे सुन रहे हैं। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा ठंडा ठंडा मटकी का पानी पिएं, फ्रिज का पानी कम पिएं, क्योंकि फ्रिज के पानी में और मटकी के पानी में बहुत फ़र्क है। जो मटकी का पानी होता है वो हमारे शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रखता है। चलिए बातें और होगी, लेकिन राजनीति फिल्म का ये गीत जो है बड़ा ही प्यारा है, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

राजनीति फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए आपको सुनवाते हैं दीपमणि और नेहा भसीन की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत फिल्म रेस 3 से।

फिल्म संगीत में बेहतरीन नगमे आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। किस्मत कनेक्शन फिल्म का गीत है, आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ें इसमें हैं, सुनते हैं।

बड़ा ही प्यारा गीत अभी आपने सुना किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। मैं थी आपके साथ आरजी एकता और अब आपको सुनवाते हैं विकास चर्चा, क्योंकि 2:10 का समय हो चुका है और विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। नमस्कार, पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 17 सितंबर 2023 को हाथों और उपकरणों की सहायता से कार्य करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पात्रता की बात करें तो आवेदक को स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में हाथों और औजारों की सहायता से कार्य करने वाला कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए था। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी। पंजीकरण के समय व्यापार में सक्रिय रूप से कार्यरत होना चाहिए था। पात्र व्यवसाय की बात करें तो एमएसएमई मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अद्यतन और संशोधित किया जा सकता है। 18 पात्र व्यवसाय में बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, ये सब कारीगर को शिल्पकार को सम्मान किया गया। कौशल उन्नयन की बात करें तो 5 से 7 दिनों में 40 घंटे 500 रुपये की प्रतिदिन प्रति, इसमें कौशल संवर्धन, आधुनिक उपकरणों का उपयोग, डिजिटल लेन देन और विपणन शामिल है। उद्यमिता, आधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यवसाय स्तर पर भी विस्तार केंद्रित है। आधुनिक उपकरण खरीद, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए ई रूपी ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक प्रदान किए जाते हैं।

व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान के साथ उद्यम विकास ऋण के रूप में 1 लाख रुपए प्रथम किस्त और 2 लाख रुपए द्वितीय किस्त का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। डिजिटल सशक्तिकरण की बात करें तो लाभार्थियों को प्रति डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपए मिलेंगे। प्रति माह 100 लेनदेन तक प्रत्येक डिजिटल भुगतान रसीद के लिए सीधे उनके खाते में जमा किया जाएगा। ब्रांडिंग विज्ञापन के लिए 250 करोड़ रुपए का कोष। ढांचे की बात करें तो NSC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा गठित शीर्ष समिति होगी। NSC को योजना को कार्यान्वित के संबंध में सभी प्रमुख नीतिगत और रणनीतिक निर्णय लेने तथा योजना में आवश्यक किसी भी संशोधन को मंजूरी देने का अधिकार होगा, जैसे कि व्यापार की अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल करना। राज्य स्तर पर योजना के परिचालन कार्यान्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। यह NSC और क्षेत्र स्तरीय व्यवस्था के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करेगी। इसके प्रभाव की बात करें तो वित्तीय सहायता औपचारिक मान्यता और बेहतर ऋण पहुंच के माध्यम से कारीगरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और व्यापारिक मान्यता को मापनीयता को बढ़ावा देना है। विरासत आधारित व्यापार को बनाए रखने के लिए आधुनिक कौशल, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रोत्साहन को एकीकृत करते हुए पारंपरिक शिल्प का समर्थन करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कारीगरों को सशक्त बनाता है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे हाशिए पर पड़े समुदाय को समर्थन देकर समावेशता को बढ़ावा देना है।

डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो प्रत्येक डिजिटल लेन देन पर 1 रुपया दिया जाता है। प्रोत्साहन प्रति माह अधिकतम 100 लेन देन तक दिया जाता है। इन लेन देनों में डिजिटल भुगतान और रसीदें शामिल है। और बात करें तो UPI QR कोड का उपयोग करने वाले शहरी खरीदारों तक उनकी ग्राहक संख्या बढ़ाती है और नकदी पर उनकी निर्भरता कम करती है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सरकार की एक क्रांतिकारी पहल के रूप में से उभरी है, जिसमें पारंपरिक कारीगरों को सहयोग और सशक्तिकरण प्रदान किया जाता है। यह योजना 2 वर्षों में ही 30 लाख प्रस्तावित लाभार्थियों के अपने 5 वर्षीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। 31,000 2025 तक लगभग 30 लाख पंजीकृत कारीगर शिल्पकार हैं, जिनमें से 26 लाख से अधिक लाभार्थियों का कौशल सत्यापन पूरा हो चुका है और इनमें से लगभग 86% ने अपनी 86% ने अपनी बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर ली है और कुशल कारीगरों में आवश्यक उपकरण सीधे लैस करने के लिए 30 लाख से अधिक ई वाउचर जारी किए हैं। तो ये थी आज की विकास चर्चा और अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे दोपहर समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और

0: क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10

0: से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238

0: जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और अब सुनवाते हैं आपको किसान भाइयों का खास कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम धारणा भैसा, राम राम।
1: राम राम गायत्री भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला हंगला किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टेम व्यू किसान भाई रे वास्ते भांत भांत री जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यहा सा और किसान भाई भी नित नवादन नवी नवी जानकारियां हुणे लाभ लेवे। तो धारणा भैसा आज किसान री बात में कई लेन आया हो सा?
1: देखो गायत्री भाई साहब, किसान रिवाद में आज किसान भाई रिवाज से जानकारी लाए हैं। खेती बाड़ी में जो उत्पाद रो ग्रेडिंग किससे करनी है, तो आपने जो किसान भाई खेती बाड़ी रो काम करे, कृषि उत्पादा री ग्रेडिंग री अगर बात करा, तो वनडो अर्थ केवल यो ही से कि फसल री कटाई रे बाद वणी री गुणवत्ता, वनडो आकार, रूप, रंग और अन्य भौतिक गुणा रे आधार पे अलग अलग वणाने श्रेणिया में और समूहा में बांटनो, यो है कृषि विपणन रो एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सो वेवे। जणी रे मायने देखो आपने किसान भाई बाजार में कृषि उपज रो सही मूल्य वणाने मिले है सा।
0: बिल्कुल सा, ग्रेडिंग रा अलग अलग मुख्य आधार भी वेवे है।

0: और खेतीबाड़ी रा ग्रेड रा अलग अलग मानक भी देखा जावे है। जिस तरह की भौतिक गुणा री जटे बात करा तो भौतिक गुणा मैंने उत्पाद रो आकार, उत्पाद रो वजन, रंग और परिपक्वता ने लेवा हासा। और गुणवत्ता और शुद्धता री जटे बात करा तो उत्पाद मैंने कंकड़, पत्थर और दूसरी फसल रा बीज नी वेणा छावे सा।
1: बिल्कुल सा। और अंडे मायने देखो अपने किसान भाई ने अणी वात रो भी ध्यान रखना चाहे कि नमी री मात्रा अनाज में और दाला में नमी रो स्तर जो है वो सही वेणो चाहे ताकि वे लंबा समय तक सुरक्षित रह सके। वंडे अलावा अपने किसान भाई ने देखो क्षति और खराबी कीड़ा नहीं लग जाए वंडो ध्यान भी रखना चाहे कटिया फटिया या फफूंद लगे थका जो भी उत्पाद है वणा ने वणाऊ अलग रखना चाहे सा।
0: ग्रेडिंग रा अलग अलग प्रकार भी व्यवसाय। पहला प्रकार की बात करा तो उत्पादक स्तर पे ग्रेडिंग, यानी किसान भाई स्वयं अपने खेत पे या घरे भी अंडे कर सके है। अड़मे ने खराब लिविया लका या पछे छोटा आकार रा जो उत्पाद है वना ने हव उत्पादों अलग कर लेनो है ताकि बाजार में हव कीमत मिल सके सा।
1: बिल्कुल सर। अंडे प्रकार की अगर बात करा तो अगलो प्रकार जो है अनिवार्य ग्रेडिंग है। जन्ने मायने अपने भारत जैसा विदेशा में निर्यात व्यवहार वाला जो भी कुछ चुनिंदा खेती बाड़ी रा जो उत्पाद है वणी रे माध्यमु ग्रेडिंग कानूनन अनिवार्य है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने देश की जो है वह साख वणी लगी रहे सा।
0: बिल्कुल सा। लारे लारे बात करा स्वैच्छिक ग्रेडिंग रे। स्वैच्छिक ग्रेडिंग रो मतलब यो है कि या जो ग्रेडिंग है या घरेलू बाजार रे वास्ते वेवे है। अंडे तहत एक मार्क जैसी सहकारी जत्री भी संस्था है वनारा मानक रे अनुसार उत्पादन ने प्रमाणित करे है। व्यापारी या पचे उत्पादक चाहे तो अपने इच्छाओं अंडे भी अपनाई सके सा।
1: बिल्कुल सा। और अंडा बहुत सारा लाभ भी है जो आप ही अपने किसान भाई ने बतावा कि अपने किसान भाई ने बेहतर मूल्य मिले यदि उत्पाद अच्छी तरीके से ग्रेड की दो थको वेगा तो खरीदार या विशेषकर थोक व्यापारी या कंपनी जो भी है अंडे माध्यम अपने किसान भाई ने प्रीमियम क्वालिटी रे ऊंची कीमत दे वाला तैयार मिले तो अपने किसान भाई ने बेहतर मूल्य अणु मिल सके ऐसा।
0: ग्रेडिंग का लाभ रिजटे बात करा तो ग्रेडेड जतरा भी उत्पाद है वना ने वन्या देखा भी केवल वना रे ग्रेड रे भरोसे आपा खरीद सका, बेच सका। अणु ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी ई नाम जैसी और कमोडिटी मार्केट में ने भी व्यापार आसान वे जावे। केवारो मतलब यो है कि विपणन में अणु आसानी बढ़ जावे सा।
1: बिल्कुल सर। और बनने मायने देखो अपने जो लाभ री अगर बात बताई रहा तो समय और लागत री बचत भी वेवे। खरीदार ने एक ही बोरी या पैकेट ने खोलने देखवारी जरूरत नहीं पड़ेगा जिन्हें मैंने सौदा जो है वे जल्दी बेचावा है। उपभोक्ता रो भरोसो जो भी है वो भी वे अन्य माध्यम देखो उपभोक्ता रो पतो लग जाएगी वे कसी गुणवत्ता वाला देगा और कतरा पैसा दे रहा है। झंडे माध्यम देखो ए ग्रेड वाला जो भी उत्पाद है बी ग्रेड वाला बेहतर वेगा सा।
0: अंडे लारे लारे भंडारण और परिवहन में भी अणु सहूलियत बढ़ेगा। एक जैसा आकार और गुणवत्ता वाला उत्पादन ने पैक करनो, कोल्ड स्टोरेज में रखनो और एक जगह दूसरी जगह पे भेजनो भी यो अणु कही है बहुत ही ज़्यादा आसान भी जाएगा। तो यो जो भारत सरकार रो यो विपणन और निरीक्षण निदेशालय खेती बाड़ी रा जो उत्पाद है अणा रो विपणन और ग्रेडिंग अधिनियम 1937 रे तहत अंडो मानक तय करे है। तो या जो खेती बाड़ी रा उत्पादारी जो ग्रेडिंग है या बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइया ने अणु नरोई हारो लाभ भी मिले, बेहतर मूल्य मिले है और विपणन में भी आसानी मिले है सा।
1: बिल्कुल सा। लारे लारे भंडारण और मंडी सुविधा भी मिले है और आवाजावन में भी सुविधा मिले है। परिवहन री और खराब या कच्चा उत्पादन ने पहली ही अलग कर देना चावे ताकि बाद रो जो बाकी स्टॉक आपने किसान भाई रहे वो सड़वारो खतरो जो है वो कम वे सके सा।
0: लारे लारे बिचौलिया री कमी भी वेवे यानी प्रमाणित ग्रेड वाला उत्पादन ने सीधा ऑनलाइन पे या पछे बड़ा खरीदार ने भी वे सके है जणू बिचौलिया री वच में ने जरूरत कम वे जावे। तो या तो किसान भाइया ने जानकारी करे कि खेतीबाड़ी रा जो उत्पाद है वणारी ग्रेडिंग किसान भाई किस तरह कर सके। अबे किसान भाइया रो मनोरंजन करावा और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: तो धारणा भैसा किसान भाइयों ने घणो ही मनभावन राजस्थानी गीत हुनायो सा, लारे लारे संदेश भी हुनाया।
4: हाँ,
3: अभी किसान भाइयों ने देखो यो घणो ही तावड़ो पड़ रियो है, घनी गर्मी पड़ रही है, और यो अबाणु यो जो मौसम चाली रियो है यो है नौ तप।
4: हाँ,
3: और यो जो नौ तपा है यो आपने सामान्य पंचांग गणना रे अनुसार 2026 महीने यो जो नौ तपा है यो 25 मई यू लेन 2 जून अपने 2026 तक यो चालेगा। और यो नौ तपा प्रकृति रो अनिवार्य संतुलन भी वेवे है, और अने जेठरा महीना में ने नौ तपा रो महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और अगर शास्त्र रे बात करा तो अने शास्त्र रे अनुसार जेठ महीना में ने सूर्य जदि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो पहला नौ दना तक प्रचंड गर्मी पड़े है, लू केवा हाँ वणा ने अणु नौ तपा अंडे केवा हाँ, और अणी समय पे तापमान जो है वो 50 डिग्री तक भी जा सके सा।
4: बिल्कुल सा, या तो आप जानकारी दी थी कि नौ तपा कई वे तो, और अब अपने किसान भाई बहना ने बतावा कि नौ तपा में आपने कई कई चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि अब बार बात की थी आपके, खूब सारी गर्मी पड़ रही है, तेज़ तावड़ो पड़ रहे है, तो 11वां जो चार रो समय है वो आपने घर उबाने नहीं निकलना है। ज़्यादा मसालेदार जो भोजन है वो आपने नहीं करना है, और देखो बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी रो भी सेवन नहीं करना है। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वणी रो आपने सेवन करना है, और देखो खाली पेट तो बिल्कुल नहीं रहना है, धूप में आपने नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा ठंडो फ्रिज रो जो पानी है वो आपने नहीं पीना है सा।
3: और अने नौ तपा रे टाइम पे लू भी लाग सके, और लू रा अगर ये लक्षण दिखे तो आपने तुरंत सावधानी देखनी है, क्योंकि कर्त्री बार कही वे तेज माथो दुखे है, चक्कर आवे, उल्टी है, बहुत ज़्यादा प्यास लागे, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म वे जावे, और बेहोशीरी जो अवस्था है या लू रा लक्षण वेवे, तो अणी टाइम पे आपना जो भी किसान भाई है वे खेतीवाड़ी में भी काम करे है तो अणी टाइम पे मनाने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है सा।
4: बिल्कुल सा, हाँची बात की। और अणी नौ तपा में आपने कई कई खान पान करना चाहे वणीरी भी जानकारी अगर करावा तो देखो अब खीरा ककड़ी जो है वह बहुत आयत में मिल रही है, तो आपने किसान भाई मुंडो सेवन कर सके। तरबूज अबार खूब आई रहा है, खरबूजा खूब आई रहा है, नारियल पानी रो सेवन कर सके, और अबार देखो बेल पर रो जो शरबत है वो अबार गर्मी में इस बेल लागे तो बेल रो शरबत जो है वो अपने पेट रे वाते बहुत ठंडक करे, तो वणी रो सेवन आपने करनो चाहे। जौरो पानी पीणो चाहे, छाछ आपने 2-3 टाइम पीणो चाहे, सौंफ ने गलाई ने सौंफ रो पानी पीणो चाहे, धनिया रो पानी रो सेवन करनो चाहे, और गुलकंद जो वे वो प्राकृतिक रूप में आपने जो पेट ने बहुत ठंडक करे आप ही घर भी बनाई सका और बाजारों भी लाई ने गुलकंद रो सेवन कर सका। चीनी की बजाय आप ही अगर मिश्री रो सेवन करांगा तो वह भी पेट रवास से बहुत ही ठंडक करेगा। आंवला रो सेवन आप ही प्रतिदिन कर सका, और एलोवेरा जूस जो है वो आपने लेनो चाहे सा।
3: तो नौ तपा में ने किसान भाइया ने सावधानी भी नरी रखनी है, धूप बचाव रखनो है। दोपहर महीने अपने 12 बजों लेन 4 बजे तक अपने कम बाढ़ने निकलनो है, और अगर निकल भी रहा हाँ तो अपने माथो ढाकन बाढ़ने निकलनो है, सूती कपड़ा पहनना है, पानी रू सेवन बहुत ज़्यादा करना है, और ORS और नींबू पानी भी ले सका हाँ, पर्याप्त आराम करनो है, मेहनत और व्यायामों बचनो है, नींद पूरी लेनी है, और लारे लारे अपने चंदन या पचे गुलाब जल रू प्रयोग करनो है, ठंडा पानी आँखा ने धोनी है, और पेरारे तलवा में थोड़ो घी भी लगाई सके। तो अणी तपा में आपने किसान भाई अगर यो ध्यान रखेगा तो यो तो 9 दिन रो वेवे है, और 9-10 दिन रे बाद में थोड़ी गर्मी रो असर थोड़ो कम वे जाएगा, तो यानी में अणी टाइम पे विशेष रूप किसान भाई ध्यान रखेगा तो वे स्वस्थ रह सकेगा और स्वस्थ

0: धारणा भाई सा किसान भाइया ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा। कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाइया रे वास्ते जानकारी लेन आया हाँ कि कृषि अनुदान रा कई कई लाभ वेवे है। कृषि अनुदान सरकार द्वारा किसान भाइया रे वास्ते आर्थिक रूप मजबूत बनावा और खेती री लागत ने कम करवा और पैदावार बढ़ावा रे वास्ते दी जावा वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है सा।
1: बिल्कुल सा। और अंडे लाभ री अगर बात करा गायत्री भाई सा, तो खेती में लागत में कमी आवे वंडे माध्यमों अपने किसान भाई देखो बीज खाद कीटनाशक और सिंचाई रे साधना पे मिला वाली जो छूट है वन पे भी खेती में व्यय वाला खर्च काफ़ी कम भी जावे है। तो आधुनिक यंत्र पे भारी सब्सिडी जो है वे अपने किसान भाई ने मिले वनडे माध्यमों देखो किसाना ने ट्रैक्टर रोटावेटर थ्रेशर और ड्रोन जैसा जो खेती बाड़ी रहा यंत्र है वनीरी खरीद पे 40-80% तक रो अनुदान रो जो लाभ है वो अपने किसान भाई ने मिले ऐसा।
0: लारे लारे सिंचाई सुविधा में ने भी सुधार वेवे है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और सोलर पंप सेट लगावारे वास्ते सरकार भारी सब्सिडी भी देवे है। जणू किसान भाइया ने पानी और बिजली री बचत भी वेवे और लागत कम वेवा ने और फसल रो उत्पाद बढ़वाऊ किसान भाइया री बचत भी बढ़े है। जणू वणारी आर्थिक स्थिति मजबूत वेवे और वणारी आय में भी वृद्धि वेवे सा।
1: बिल्कुल सा। और तारबंदी री जडे बात करें तो बसला में आवारा पशुओं ने बचावा रे लिए खेत री तारबंदी कराणो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी दी जावे जणू आपणे किसान भाई ने बहुत लाभ मिले और वणारी जो फसल है वा नुकसान वध सके सा।
0: लारे लारे सूखो बाढ़ या पछे कीट लागवा फसल जो है वह खराब वे जावे है तो वणी फसल ने खराब वेवा पे कृषि इनपुट सब्सिडी योजना रे तहत किसान भाइया ने मुआवजा राशि भी मिले है सा। अणु किसान भाई ने नुकसान सुरक्षा वेवे और अबे किसान भाइया ने बतावा कि लाभ लेवारे वास्ते कई कई जरूरी पात्रता और दस्तावेज छावे है सा।
1: बिल्कुल सा। तो अपने किसान भाई ने सबू पहले अपने नाम पे कृषि भूमि जंडे मायने देखो अपने जो किसान भाई है वणारे जमीन रा दस्तावेज वेणो अनिवार्य है। अंडे लारे लारे अपने किसान री आईडी फार्मर आईडी जो है वो भी वेणी चावे आधार कार्ड वेणो चावे बैंक री पासबुक वणारे पास वेणी चावे और वणारो मोबाइल नंबर जैसा जो दस्तावेज है वणी री आवश्यकता पड़े सा।
0: तो या तो किसान भाइया ने जानकारी कराई कि कृषि अनुदान रा कई कई लाभ वेवे और अंडे वास्ते कई कई जरूरी पात्रता छावे और दस्तावेज छावे और अबे चालता चालता एक और राजस्थानी गीत किसान भाइया ने हुणावा सा।

0: तो धारणा भैसा किसान भैया ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुणायो सा।
1: हाँ सा,
0: अबे गड़ी री तरफ नाला तो कार्यक्रम विदारो टेम वी गयो सा। चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
2: कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना था। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 3 बजने को है। जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ शंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और

0: मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा के 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा में के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनते हैं हमारे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नेहल, आजकल लोगों की लाइफ इतनी रैंडम हो गई है ना कि सुबह मोटिवेशनल रील्स और दोपहर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और रात को चलो अब कल से सीरियस होते हैं।
1: सच कहा चिन्मय, और बीच में अगर अच्छी कॉफी मिल जाए तो इंसान 2 घंटे एक्स्ट्रा सर्वाइव भी कर लेता है।
0: और शायद इसी वाइब की वजह से आज का पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी भी है, मिस्ट्री भी, और एंशंट केव्स भी, और कुछ ऐसे लोग जिनकी स्टोरीज गूगल सर्च से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
1: मतलब अगले कुछ मिनट एकदम स्ट्रेट नहीं जाने वाले, कभी लगेगा ट्रैवल व्लॉग चल रहा है तो कभी मिस्ट्री पॉडकास्ट वाली फील आएगी, और कभी ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री क्वाइटली साइड में बैठकर सब सुन रही है।
0: और आज का मूड भी बिल्कुल वेदर जैसा है, थोड़ा काम, थोड़ा क्लाउडी, थोड़ा सस्पेंस वाला, और बीच बीच में कॉफ़ी कैफे एस्थेटिक्स भी।
1: तो अगर आपका ब्रेन अभी हाफ स्लीपी मोड में है तो परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अगले कुछ मिनट नाज ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, ना फुल टाइम पास। बस इतने इंटरेस्टिंग ज़रूर होंगे कि स्क्रॉल करने का मन थोड़ा कम हो जाएगा,
0: तो अपने हेडफोन्स को ठीक कर लीजिए।
1: क्योंकि आज स्टोरीज भी होंगी, मिस्टीरियस भी और वाइब्स भी।
0: तो मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे नेहल, और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहाँ यूथ की सोच है, आइडियाज़ है और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
1: तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं।

0: झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: नेहल, आजकल कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा मूड बन गई है। किसी के लिए सुबह की शुरुआत तो किसी के लिए लेट नाइट का वर्क पार्टनर, और किसी के लिए कैफ़े में बैठकर एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेने का बस एक एक्सक्यूज़। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉफ़ी की ये पॉपुलैरिटी सिर्फ लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, इंडिया में कॉफ़ी इंडस्ट्री भी तेज़ी से ग्रो कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा चिन्मय। पहले इंडिया को ज़्यादा टी कंट्री माना जाता था, लेकिन अब कॉफ़ी कल्चर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज छोटे कैफेज से लेकर बड़ी कॉफ़ी ब्रांड्स तक हर जगह लोगों का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात ये है कि कॉफ़ी अब सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रही, छोटे शहरों में भी कैफ़े कल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है।
0: और शायद इसी वजह से आज इंडिया में कॉफ़ी धीरे धीरे ग्लोबल बन रही है। अगर इंडिया में कॉफ़ी की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत काफ़ी पुरानी मानी जाती है। साउथ इंडिया, खासकर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु कॉफ़ी प्रोडक्शन के बड़े सेंटर्स हैं। इंडिया में मेनली अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, और इंडियन कॉफ़ी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
1: पहले लोग सिर्फ कॉफ़ी बोलते थे, अब लोग फ्लेवर्स, बीन्स और ब्रिविंग स्टाइल्स तक डिस्कस करने लगे हैं। यानी कॉफ़ी अब सिर्फ पीने की चीज़ नहीं, पूरा एक्सपीरियंस बनती जा रही है।
0: आज अगर किसी कैफ़े में चले जाओ तो वहाँ लोग सिर्फ कॉफ़ी के बारे में बात नहीं करते, वो कहीं लैपटॉप्स लेकर घूम रहे होते हैं, कहीं मीटिंग्स चल रही होती है। मतलब कैफ़ेज़ धीरे धीरे पूरे सोशल स्पेसेस बन चुके हैं।
1: और यूथ के बीच इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स हो या कोल्ड कॉफ़ी ट्रेंड्स, ये सब अब मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो कई लोगों के लिए कॉफ़ी यानी प्रोडक्टिविटी।
0: अगर बिजनेस साइड से देखा जाए तो इंडिया की कॉफ़ी इंडस्ट्री तेज़ी से एक्सपांड हो रही है। न्यू कैफ़े चेन्स, लोकल कॉफ़ी स्टार्टअप्स, ऑनलाइन कॉफ़ी ब्रांड्स और प्रीमियम कॉफ़ी प्रोडक्ट्स, सब कुछ तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यानी कॉफ़ी अब सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं रही बल्कि एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बन चुकी है।
1: और इंटरेस्टिंग बात यह है चिन्मय कि आज लोग लोकल इंडियन कॉफ़ी ब्रांड्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी, ऑर्गेनिक कॉफ़ी और हैंडक्राफ्टेड ब्रिविंग जैसी चीज़ें युवा ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं।
0: लेकिन कॉफ़ी इंडस्ट्री सिर्फ कैफ़ेज़ तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे लाखों फार्मर्स की मेहनत भी जुड़ी है। कॉफ़ी प्लांटेशन मेनली साउथ इंडिया में, और वहाँ का क्लाइमेट, रेनफॉल और फार्मिंग कंडीशंस कॉफ़ी क्वालिटी में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं।
1: और अब सस्टेनेबिलिटी पर भी काफ़ी फोकस बढ़ रहा है, चाहे वो इको फ्रेंडली फार्मिंग, बेटर फार्मर सपोर्ट और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तभी लॉन्ग टर्म ग्रो करती है जब फार्मर्स भी उसके साथ ग्रो करें।
0: तो अब कॉफ़ी सिर्फ एक बेवरेज नहीं रही, ये लाइफस्टाइल भी है, बिजनेस भी है और इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा भी।
1: और शायद यही रीज़न है कि कॉफ़ी एक छोटी सी कप में भी टेस्ट के साथ साथ कल्चर, क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ में भी दिखाई देने लगी है।

0: आना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: निहल, इमेजिन करो कि एक पूरी कॉलोनी का सेटअप किया गया हो, वहाँ लोग रह रहे हो, घर बन रहे हो, डेली लाइफ चल रही हो, और फिर कुछ समय बाद लोग जब वहाँ वापस पहुँचे तो पूरा प्लेस खाली मिले, ना कोई इंसान, ना कोई क्लियर साइन ऑफ स्ट्रगल और ना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बस एक एब्डोमेन सेटलमेंट और एक मिस्टीरियस वर्ल्ड जो लकड़ी पर लिखा हुआ मिला। लिखा हुआ था क्रोटोन, और शायद यही रीज़न है कि रोनोक कॉलोनी की आज भी जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस में से एक मानी जाती है।
3: और ऑनेस्टली चिन्मय, सबसे मुश्किल बात ये लगती है कि ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल हिस्टोरिकल मिस्ट्री है। एक पूरी कॉलोनी जिसमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन शामिल थे जो कि सडनली गायब हो गई, और सेंचुरीज बाद भी नोबडी नोज कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। और शायद इसी वजह से रोनोक कॉलोनी को द लास्ट कॉलोनी भी कहा जाता है।
2: रोनोक कॉलोनी की शुरुआत 1580s में हुई थी, जब इंग्लिश सेटलर्स नॉर्थ अमेरिका में नई सेटलमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान रोनोक आइसलैंड पर एक कॉलोनी बनाई गई जो कि आज नॉर्थ कैरोलिना रीजन के आसपास मानी जाती है। वहाँ इनिशियली सेटलमेंट तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन सर्वाइवल इतना ईजी नहीं था। फूड की कमी, डिफ़िकल्ट कंडीशंस और लोकल कॉन्फ्लिक्ट जैसी प्रॉब्लम सामने आने लगी। फिर भी कॉलोनिस्ट ने वहाँ रहने की कोशिश जारी रखी।
3: और इंटरेस्टिंग बात ये है चिन्मय कि उस कॉलोनी में सिर्फ सोल्जर्स या एक्सप्लोरर नहीं थे, फैमिलीज भी थी, यानी लोग वहाँ टेम्पररी कैंप बनाने नहीं बल्कि नई जिंदगी शुरू करने गए थे। इतना ही नहीं, वहीं एक बच्ची का जन्म भी हुआ, वर्जीना डेयर, जिन्हें इंग्लिश पेरेंट्स से नॉर्थ अमेरिका में जन्म लेने वाला पहला इंग्लिश चाइल्ड माना जाता है।
2: अब कहानी यहीं से मिस्टीरियस हो जाती है। कॉलोनी के लीडर जॉन वाइट सप्लाईज लेने इंग्लैंड वापस गए, लेकिन वॉर्स और डिलेज की वजह से उन्हें वापस लौटने में लगभग 3 साल लग गए, और जब वो फाइनली वापस रोनोक पहुंचे तो पूरा का पूरा कॉलोनी खाली था। घर खाली थे, लोग गायब थे, और कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि आखिर वहाँ हुआ क्या।
3: और सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि वहाँ डिस्ट्रक्शन के साइन भी ज़्यादा नहीं मिले, मतलब ऐसा नहीं लगा कि किसी ह्यूज बैटल या वायलेंट अटैक के बाद लोग गायब हुए हो। बस एक वर्ड मिला, कोरओटोअन, जो एक नियर बाय आइसलैंड और लोकल ट्राइब का नाम माना जाता था, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है।
2: अब नेचुरली इतने सालों में कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद कॉलोनिस्ट नियर बाय ट्राइब्स के साथ जाकर रहने लगे ताकि सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि फेमाइन और डिसीजेस की वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी कॉलेप्स हो गई। कुछ थ्योरीज तो निहल ये भी सजेस्ट करती है कि शायद अटैक हुआ हो, लेकिन उसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें आज तक नहीं मिला।
3: और शायद यही चीज़ इस मिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि आंसर्स पूरे क्लियर नहीं है। हर थ्योरी में कुछ लॉजिक है, लेकिन कोई थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि उसे फाइनल ट्रूथ माना जा सके। यानी सेंचुरीज बाद भी रोनोक कॉलोनी हिस्ट्री के बिगेस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चंस में भी एक बनी हुई है।
2: और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रोनोक कॉलोनी की मिस्ट्री इतनी फेमस हो चुकी है कि ये बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज और हॉरर स्टोरीज तकातक में इनके रेफरेंस लिए जाते हैं। कई लोगों को मिस्ट्रीज हमेशा अट्रैक्ट करती है, स्पेशली वो मिस्ट्रीज जो कि एंडिंग ना हो, जिनकी एंडिंग आज भी अननोन हो।
3: और शायद इसी वजह से इतने साल बाद भी लोगों में ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन कॉलोनिस्ट के साथ हुआ क्या था। क्या वो कहीं और जाकर बस गए, क्या कोई ट्रेजेडी हुई, या फिर हिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर था जो कभी प्रॉपरली लिखा नहीं गया।
2: तो रोनोक कॉलोनी सिर्फ एक हिस्टोरिकल सेटलमेंट नहीं रही, ये क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री का सिंबल बन चुकी है, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री हमें आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन दे जाती है।
3: और शायद यही रीज़न है कि द लास्ट कॉलोनी की कहानी आज भी लोगों को इक्वली फैसिनेटिंग और अनसेटल्ड लगती है।

निहल, कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाते ही ऐसा लगता है कि हिस्ट्री अभी भी वहीं मौजूद है, बस चुपचाप खड़ी हुई। न ज़्यादा लाउड क्राउड्स, ना फ्लैशी लाइट्स, बस पत्थरों की कहानियां, पुरानी दीवारें और ऐसी साइलेंस जो खुद ब खुद बोल ऐसा लगता है कि बोल रही है। और आंध्र प्रदेश की अंडावली केव्स एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग देती है। ये सिर्फ केव्स नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सेंचुरीज पहले किसी ने पूरा आर्किटेक्ट पहाड़ के अंदर क्रेव कर दिया हो। और ऑनेस्टली सबसे सरप्राइजिंग बात ये लगती है कि उस समय इतनी डिटेलिंग आखिर पॉसिबल कैसे रही होगी, क्योंकि आज मॉडर्न मशीन्स होने के बावजूद भी ऐसी प्रिसाइज क्रिएशन करना आसान नहीं है। और उस दौर में जहाँ लोगों को ज़्यादा मशीनरी का नॉलेज भी नहीं था,

0: टाइम पे ऐसा आर्टवर्क उन्होंने बना दिया।
1: जी हाँ दोस्तों, उंडावली केव्स आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है और माना जाता है कि इनका निर्माण लगभग 4th से 5th सेंचुरी के बीच हुआ था। ये केव्स एक ही सैंडस्टोन से हील को काटकर बनाई गई है और यही चीज़ इन्हें इतना यूनिक बनाती है, क्योंकि इमेजिन करो आज भी इतनी बड़ी रॉक स्ट्रक्चर को शेप देना ह्यूज टास्क माना जाता है और उस समय लोगों ने मल्टी स्टोरी केव स्ट्रक्चर को शेप देने का ह्यूज टास्क किया। शायद यही रीज़न है कि ये प्लेस सिर्फ टूरिस्ट को नहीं बल्कि हिस्ट्री और आर्किटेक्चर लवर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन इन्फ्लुएंसर्स की झलक दिखाई देखने को मिलती है, यानी ये केव सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का मिक्सचर लगती है। और जब लोग पहली बार इन केव्स को देखते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है, इतने साल पहले ये सब कैसे बनाया होगा।
0: अगर इन केव्स को ध्यान से देखा जाए निहल, तो सबसे पहली स्ट्राइकिंग चीज़ लगती है इनकी डिटेलिंग। पिलर्स, क्रेविंग्स और स्कल्पचर्स इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि बार बार ऐसा लगता है कि ये केव्स नहीं किसी एशियन पैलेस का हिस्सा हो। और सबसे फेमस अट्रैक्शन है भगवान विष्णु की रिक्लाइनिंग स्टैचू, जो एक विशाल सिंगल स्टोन क्रेविंग मानी जाती है। उनकी साइज़ और डिटेलिंग दोनों इतनी इंप्रेसिव लगती है कि लोग काफ़ी देर तक बस उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। और शायद यही एशियंट इंडियन आर्किटेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है कि रिसोर्स लिमिटेड थे लेकिन इमेजिनेशन अनलिमिटेड थी। उस समय टेक्नोलॉजी आज जैसी एडवांस नहीं थी, लेकिन क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप का एक लेवल इतना स्ट्रांग था कि सेंचुरीज बाद भी ये स्ट्रक्चर्स लोगों को अमेज कर रहे हैं।
1: और चिनमय, उंडावली केव्स की ब्यूटी सिर्फ स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है, इन केव्स के आसपास का पूरा एरिया भी बहुत पीसफुल फील देता है। पास में कृष्णा रिवर दिखाई देती है और ऊपर से पूरा लैंडस्केप बहुत सुंदर लगता है, मतलब हिस्ट्री और नेचर दोनों एक साथ दिखाई देता है। शायद इसी वजह से ये प्लेस सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं लगता, एक काम ट्रैवल एक्सपीरियंस जैसा फील होता है। यहाँ पहुँचकर ऑटोमेटिकली पेस स्लो हो जाता है, लोग जल्दी जल्दी एक्सप्लोर नहीं करते, थोड़ा रुककर सराउंडिंग्स को फील करते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा लगता है जहाँ नॉइस अपने काम हो जाए। और शायद आज ही फास्ट लाइफ में ऐसी प्लेसेस और भी स्पेशल लगने लगती हैं।
0: आज उंडावली केव्स टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स और ट्रैवल व्लॉगर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ हर एंगल से लिटरली पॉडकास्ट जैसा फील होता है। एशियन कार्विंग्स, रॉक कट आर्किटेक्चर और नेचुरल लाइट का कॉम्बिनेशन पूरे पैलेस को एक सिनेमेटिक फील देता है। और सोशल मीडिया जनरेशन के लिए भी एक ऐसी प्लेस इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को सिर्फ क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए यूनिक एक्सपीरियंस। यहाँ की वॉल्स, पिलर्स और केव ओपनिंग्स में जो नेचुरल शेडोज से लाइटिंग बनती है, वो पूरा एटमोस्फियर और भी ड्रामेटिक बना देती है। और शायद इसी वजह से कई लोग ये प्लेस मूवी सेट जैसा भी फील होता है।
1: और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऐसे प्लेसेस सिर्फ घूमने के लिए नहीं होते, ये क्यूरियोसिटी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे एंशियंट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि उस समय लोगों की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, उन्होंने इतनी मेहनत से ये सब कैसे बनाया होगा और सेंचुरीज पहले लाइफ कितनी डिफरेंट रही होगी। शायद हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात भी यही है, वो सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बताती, इमेजिनेशंस भी एक्टिवेट कर देती है।
0: ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें सिर्फ माउंटेन्स नहीं दिखाती, ये भी याद दिलाती है कि क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सेंचुरीज पहले भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे थे जो आज भी लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। और शायद यही रीज़न है कि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि कभी कभी पुरानी चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा इंप्रेसिव फील हो जाती है। उंडावली केव्स भी उन्हीं प्लेसेस में से एक है जो साइलेंटली ये प्रूव करती है कि आर्ट, पेशेंस और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन टाइम से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है।
1: तो उंडावली केव्स सिर्फ पत्थरों में बनी केव्स नहीं है, ये इमेजिनेशन, पेशेंस और एंशंट क्राफ्टमैनशिप का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेंचुरीज के बाद भी लोगों को इक्वली अमेज करता है। और शायद ट्रैवलिंग की इस सबसे अच्छी बात भी यही है, कुछ जगह सिर्फ फोटोज नहीं देती, थोड़ा वंडर भी दे जाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: निहल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं फेमस बनते, बल्कि अपनी सोच और कंट्रीब्यूशन की वजह से लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग किताबें लिखते हैं, कुछ डिस्कवरीज करते हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है जो क्वाइटली सोसाइटी पर परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी ही अलग अलग फील्ड्स की पर्सनालिटीज़ की, जिन्होंने लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस और एग्रीकल्चर सबको अपनी मेहनत और विजन से एक नई पहचान दी।
4: बिल्कुल चिन्मय, एक तरफ है रिनोव्ड राइटर, थिंकर और वक्ता यानी सुकुमार अजीकोड, और दूसरी तरफ है रिनोव्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यानी बेंजामिन पियरी पाल। दोनों की फील्ड्स अलग थी, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, अपने काम से जनरेशन को इन्फ्लुएंस करना।
3: अगर सुकुमार अजीकोड की बात करें तो वो मलयालम लिटरेचर की सबसे रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ में से गिने जाते हैं। उनका जन्म जो है वो केरला में हुआ था, और उन्होंने राइटर, क्रिटिक, फिलोसोफर और पब्लिक स्पीकर के रूप में अलग अलग पहचान बनाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात

0: ये है कि लोग उन्हें सिर्फ ऑथर के तौर पर नहीं जानते, बल्कि उनकी स्पीचेस, उनके थॉट्स और उनके जो विचार थे उस पे लोग आज भी काफ़ी भरोसा करते हैं। वो सोशल इश्यूज, कल्चर, मॉरलिटी और ह्यूमन वैल्यूज जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करते थे, और शायद यही रीज़न है कि उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं रही।
1: और चिन्मय, उनकी स्पीकिंग स्टाइल इतनी पावरफुल मानी जाती थी कि लोग उन्हें सुनने स्पेशली जाते थे। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक माना जाता है। यानी वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल ऑडियंस से नहीं, कॉमन पीपल से भी कनेक्ट कर पाते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी राइटिंग्स और स्पीचेस दोनों इक्वली पॉपुलर रहीं।
0: उनकी सबसे फेमस वर्क्स में तत्वामसी नाम का नाम खास तौर पर लिया जाता है, जिसे मलयालम लिटरेचर की इम्पोर्टेंट बुक्स में गिना जाता है, और इसी बुक्स में उन्होंने प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, वाल्वियार अवार्ड, वथौल अवार्ड और केरला गवर्नमेंट की हाइएस्ट लिटरेचर ऑनर एथुनचन पुरस्कारम भी दिया गया। यानी लिटरेचर और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों उनके लिए काफ़ी सम्मान भरे रहे।
1: और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने वो ऑनर एक्सेप्ट नहीं किया। और शायद यही उनकी पर्सनैलिटी को और अलग बनाता है, क्योंकि उनके लिए रिकॉग्निशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ थे।
0: और अगर अब बेंजामिन पर्ल पाल की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर और साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा माना जाता है। वो रिनोन्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जेनेटिक्स थे, और खासकर वीट रिसर्च के लिए गिने जाते थे, और उन्होंने हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ पर काम किया, जिसका इंडियन एग्रीकल्चर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा। और शायद यही वजह है कि उन्हें इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में गिना जाता है।
1: बिल्कुल, और सबसे खास बात ये थी कि उनका फोकस सिर्फ लेबोरेटरी रिसर्च तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंडियन फार्मिंग कंडीशंस को समझते हुए प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स पर भी काम किया। मतलब उनका वर्क डायरेक्टली फार्मर्स, प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था, और उस समय इंडिया के लिए एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी।
0: बेंजामिन ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस को मॉडर्न डायरेक्शन देने में काफ़ी योगदान दिया, और साइंस फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कई बड़े ऑनर्स भी मिले। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और इसी के बाद पद्म विभूषण जैसे प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर्स से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS भी चुने गए, जो साइंस फील्ड के सबसे रेस्पेक्टेड ऑनर्स में से एक माना जाता है।
1: और इंटरेस्टिंग बात ये भी है जिनमें कि बेंजामिन सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, नेचर लवर भी माने जाते थे। उन्होंने रोजेज़ और हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, और उन्होंने इस फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब साइंस और क्रिएटिविटी दोनों उनके पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं।
0: अगर ध्यान से देखें तो सुकुमार और बेंजामिन दोनों की जर्नीज कम्प्लीटली डिफरेंट थी। एक लिटरेचर और फिलोसॉफी से जुड़े थे तो दूसरे साइंस और एग्रीकल्चर से, लेकिन दोनों ने नॉलेज को आगे बढ़ाया और सोसाइटी पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट छोड़ा।
1: और शायद यही किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनका काम सिर्फ उनके समय तक लिमिटेड नहीं रहता, आने वाली जनरेशंस तक इन्फ्लुएंस करता रहता है।
0: तो चाहे वर्ड्स की दुनिया हो या साइंस की, आइडियाज़, डेडिकेशन और विज़न दोनों जगह इक्वली पावरफुल होते हैं।
1: और शायद यही रीज़न है कि ऐसी पर्सनैलिटी सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनती, इंस्पिरेशन का हिस्सा भी बन जाती है।

0: एक तरफा तराजू, आ तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं, उसे देगा क्या हिसाब
1: तू? तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने हॉलीवुड में महिला शक्ति की परिभाषा ही बदल दी। वो है हमारी खास शख्सियत पाम ग्रियर, एक ऐसा नाम जिसने 70s के दौर में फिल्मों में महिलाओं को सिर्फ साइड रोल से निकालकर लीड हीरो बना दिया।
1: उनका पूरा नाम था पैमेला सुजेट ग्रियर, जिनका जन्म 26 मई 1949 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के विस्टन सलेम में हुआ था।
0: ये सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक गायिका और मार्शल आर्टिस्ट भी है, और ख़ास बात यह है कि ये मशहूर डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटियो ने इन्हें सिनेमा की पहली महिला एक्शन स्टार कहा है।
1: इन्हें सबसे ज़्यादा पहचान मिली उनकी फिल्म कॉफ़ी और फॉक्स एंड ब्राउन से। इन फिल्मों में उन्होंने एक ऐसी मजबूत और निडर महिला का किरदार निभाया जो अपने दम पर लड़ती है और न्याय के लिए खड़ी होती है।
0: सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया, जैसे द बिग डॉल हाउस, वुमेन इन केजेस, ब्लैक मामा, वाइट मामा और शेबा बेबी, और हर बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग और दमदार रहा। और फिर आया उनके करियर का एक शानदार मोड़ जब लगभग 30 साल बाद उन्होंने फिल्म जैकी ब्राउन में मुख्य भूमिका निभाई,
1: और इस फिल्म में उन्होंने फिर से सुर्खियों में ला दिया। उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई और उन्हें कई बड़े अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिले, जैसे एमी, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स ग्लीड अवार्ड।
0: अगर टेलीविज़न की बात करें तो पाम ग्रियर ने द एल वर्ड जैसी पॉपुलर सीरीज में भी काम किया और अपने किरदार किट पॉटर्स से लोगों का दिल जीत लिया। और उनकी खास बात यह है कि इतने सालों के बाद भी वो एक्टिव है और लगातार काम कर रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है।
1: इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत हो तो आप किसी भी दौर में खुद को साबित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि पूरी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक नई राह बनाई। ये एक ऐसी महिला है जिसने सिनेमा को नई पहचान दी, पाम ग्रियर।
1: अब बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी एक्टिंग इतनी अलग है उतनी ही दमदार भी है। वो है हेलेना बोहम कार्टर, जिनका जन्म 26 मई 1966 को इंग्लैंड में हुआ था, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में कर दी थी। इन्होंने टीवी अडॉप्शन पैटर्न ऑफ रोजेस से अपने अभिनय के समय का शुरुआत करी। उनकी प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त थी कि जल्द ही उन्हें फिल्म लेडी जेन में लीड रोल मिल गया, और सबसे खास बात ये कि उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही साबित हुआ।
0: और उनकी मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें से हैं अ रूम विद अ व्यू, फाइट क्लब और खासकर हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में बेलास्ट्रिक लेस्ट्रेंज का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। सही कहा, उनका जो वो पागलपन भरा डार्क किरदार आज भी लोगों में याद है। और अगर बात करें उनके पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनर की, तो टीम बर्टन के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी चर्चित रही है।
1: जी हाँ, दोनों ने एक साथ कई शानदार फिल्में की है, जैसे प्लैनेट ऑफ एपेस, बिग फिश, कॉरप्स ब्राइड और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और एलाइस इन द वंडरलैंड। हेलेना की एक्टिंग को सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि अवार्ड्स ने भी खूब सराहा है।
0: बिल्कुल, उन्हें द विंग्स ऑफ द डव और द किंग्स स्पीच के लिए अकादमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला, और यही नहीं, उन्होंने कई गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन, एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड, एक बाफ्टा अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुए।
1: और 2012 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा

0: मर्डर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर यानी CBE से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, और दोस्तों कहते हैं हर कलाकार की एक पहचान होती है, जिसमें हमने बात करी हेलेना बोहमन कार्टर की, अब और उनकी पहचान है हर बार खुद को बदल देना, जो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी स्टाइल भी अलग है और एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल है।
0: अब बात करते हैं आगे चलते हुए लेनी क्रेविट्स की, जो कि एक ऐसी कलाकार है जिनकी आवाज़ में जादू और स्टाइल में अलग ही अंदाज है। इनका जन्म 26 मई 1964 को न्यूयॉर्क सिटी के अमेरिका में हुआ था।
1: ये सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि एक शानदार संगीतकार, गीतकार, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और अभिनेता भी है। और ख़ास बात यह है कि उनका म्यूज़िक किसी एक शैली तक सीमित नहीं है, रॉक, फंक, सोल, रेगे, सबका शानदार मिश्रण आपको उनके गानों में सुनने को मिलता है।
0: उनका पहला एल्बम लेट लव रूल साल 1989 में आया था, जिसने उन्होंने एक अलग पहचान दिखाई दी, और उसके बाद जैसे हिट गानों की लाइन लग गई, जैसे इट एंड ओवर टिल इट्स ओवर, अगेन, फ्लाई अवे और अमेरिकन वुमन जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है।
1: जिनमें क्या तुम्हें पता है लेनी क्रेविट्स ने 1999 में से लेकर 2002 तक लगातार 4 साल ग्रैमी अवार्ड जीता, वो भी बेस्ट मेल रॉक वोकल परफॉर्मेंस कैटेगरी में।
0: जी हाँ, और इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया, जो था एक ही कैटेगरी में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का।
1: अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी अभिनेत्री लीजा बॉनेट से हुई थी, हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया और उनकी बेटी जोए कैरेट्स आज खुद एक जानी मानी अभिनेत्री और सिंगर है।
0: सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, लेनी क्रेविट्स ने फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है, जिसमें उन्होंने प्रीशियस और द हंगर गेम जैसे फिल्मों में अभिनय किया है, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई।
1: और दोस्तों लेनी क्रेविट्स ने क्रेविट्स डिज़ाइन इंक नाम का एक क्रिएटिव स्टूडियो भी शुरू किया है, यानी वो हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ते हैं। सच में एक ऐसा कलाकार जो संगीत, अभिनय और डिज़ाइन तीनों में कमाल करता है।
0: तो दोस्तों ये थी लेनी क्रेविट्स की, एक मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार जिनकी कला आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बात करते हैं अब ऐसे पहलवान की जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। सुशील कुमार, एक ऐसे पहलवान जिन्होंने कुश्ती के मैदान में इतिहास रच दिया।
4: जी हाँ, सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 को हुआ था और वह भारत के दिग्गज फ्रीस्टाइल पहलवानों में से गिने जाते हैं।
3: उनकी खास बात ये है कि वे भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते।
4: बिल्कुल, 2008 के बेंजामिन ओलंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता और फिर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक हासिल कर पूरे देश को गर्व महसूस कराया।
3: इतना ही नहीं, उन्होंने 2010 की वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास भी बनाया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और 2010 दिल्ली, 2014 ग्लासगो और 2018 गोल्ड कोस्ट, तीनों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
4: उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें 2006 में अर्जुन पुरस्कार और 2011 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक का सम्मान यानी कि पद्मश्री से नवाजा गया।
3: लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जैसे मई 2021 में एक विवाद ने सुशील कुमार की छवि को काफ़ी प्रभावित किया।
4: दिल्ली के छात्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें मई 2021 में गिरफ्तार किया गया और तब से वे जेल में हैं।
3: इनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी होती है।
4: बिल्कुल, खेल के मैदान में जहां उन्होंने देश का नाम रोशन किया, वहीं जीवन के कुछ फैसलों ने उनके करियर पर सवाल खड़े कर दिए।
3: तो दोस्तों, ये थी कहानी सुशील कुमार की, एक महान पहलवान जिनकी उपलब्धियां और विवाद दोनों ही चर्चा का विषय रहे हैं।

तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ थे चिन्मय। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मूज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप

0: के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं फिल्मी गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के माध्यम से। पहला गीत विशाल डडलानी, बप्पी लहरी, के और नीति मोहन की आवाज में आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। फिल्म का नाम गुंडे।

तो श्रोताओं, हम आगाज कर चुके हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का इस मस्ती भरे गीत के साथ, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचाते हैं लुटेरे फिल्म से दिलकश आवाज मोनाली ठाकुर की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंच जाते हैं, उदित नारायण, सुनीता राव व साथियों की दिलकश आवाज में फिल्म गुप्त से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में परिंदा फिल्म से।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। 6:40 पर आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया

0: जा सकता है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6500

0: 500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज जिला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूं कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो, और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800

0800-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में ACB ने घड़साना थाने के SI रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और ANM भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही हैं। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग

0: तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के दो तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानियों मिलर काम करण माथे जोर तीनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू हैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश के हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगती पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर कने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे राखी जा प्रहरी सम्मेलन माई बोल रहा है। वे कहो कि ई ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकत मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथे बसियोड़ा गांव रा लोगा नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजनावा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हलका माए ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माए शुरू करतियो चावेला। गृहमंत्री कहो कि प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊं बीएसएफ रो सुबीतो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृहमंत्री सरहद 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो कि साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलों ने और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ों रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहले गृह मंत्री सरहद माथे तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए वारा योगदान री सराहना कीनी। इ मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलावां सारू नूवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृहमंत्री बीकानेर माए

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकारा हुई बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माईफी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ये पाछे वठेऊ जहाज उड़ान भरण लाकेला। हवाई अड्डाऊ दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू फैचा वेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रा बारा माए विचार करण सारू ही कहो। ध्यानजोग है कि 1088 एकड़ हल्का माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डाऊ हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री 3 विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो कि आ हस्तियां रा मान राजस्थान रो माथो ऊंचो फियो है। ध्यानजोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही जामाए राज्य रा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओलखाण दिरावन वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावन वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी चियो हो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषया माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई योचावेला। न्यारा न्यारा विषया री परीक्षावां ने 4 ग्रुप माए बांटी ची है। प्रदेश माए किसाना ने नकली और अमानक बीजाऊं बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर माए आज खास अभियान चलायो। इन दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारां सागे मेलर कथित नकली बीज बनावन रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी माए छापामारी रे दौरान कंपनी माए घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो कि सरकार आवता बुआई सत्र सारू किसाना ने बेहतर गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया करावनो ते कीनो है। तंबाकू रा गलत नतीजा रा बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगों ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनु जुड़ी राय और जरूरी सेवावां मुहैया कराई जावेला। 31 मई ने मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा माए खास कार्यक्रम रख्या जावेला। इन बीच महिलावां और टाबरियां माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इन दौरान अस्पतालां माए महिलावां रा शरीर माए खून री जांच सागे इन री कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दी री ची। अरबे मौसम प्रदेश माए न्यारी न्यारी छोड़ा लू बाजणो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगनी जिला माए आज ही पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर माए 47 जबकि फलौदी और बीकानेर माए 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा माए रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। चूरू माए पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगों ने घनी परेशानी रो सामो करनू पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर माए लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। इन बीच भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ये पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहो के अहलकारा ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है।
1: जितनी

0: आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो, और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
1: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवण सागे उन्नो बायरो बाजन रा आसार जताया है। इन बीच 28 मई प्रदेश में कठे कठे आंधी बारिश वेवण री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरां रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माय करी जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीका अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माई बतायो हो के ई योजना रा तहत रेल और हवाई जहाज रे जरिए 56,000 बुजुर्गों ने मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। आम आयु 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा

0: 56,000 बुजुर्गाने मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। आम आयो 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा ई सीजन रो पहलो क्वालिफायर मुकाबलो आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स बीच खेलो चावेला। अब थोड़ी देर पछे धर्मशाला माए फेवन वाला ही मुकाबला माए जीतन वाली टीम सीधी आईपीएल 2026 रा फाइनल माए पूग जावेला, जदके हारबा वाली टीम ने एक और मौको मिलेला। वोडरा तेत काल मोहाली माए खेलिया जावन वाला एलिमिनेटर मुकाबला माए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमी सामी भेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू BSF फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है जावेला। RPSC वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश रा कई हलका माए लू रो कोप, श्री गंगानगर माए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नानू भाई, राम राम।
1: राम राम पूजा भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाई बहना ने आपनो राम राम सा।
1: बिल्कुल सा, देखो चौपाल रो टाइम भी हो रही है। देखो पूजा बहन, गायत्री बहन, कर्मा भाई, हरमू भाई सब आया है। और देखो गायत्री भाई सा आज अपने कार्यक्रम में आया। हाँ तो देखो गायत्री भाई सा आज अपने कार्यक्रम में देखो जानकारी किसान भाई बहना होते खेती बाड़ी संबंधित लावा, पशुपालन संबंधित लावा, और देखो नित नई जानकारी जो है आपा किसान भाई बहना ने दा। हाँ तो आज अनी कार्डी में देखो चौपाल री बात में किसान भाई बहना वते गायत्री भाई सा कई जानकारी लाया हो सा।
0: चौपाल री बात में किसान भाई रे वास्ते लेन आया हाँ खेती बाड़ी रा उत्पाद और परिवहन। कृषि जो उत्पाद है और परिवहन वड़ारो आपस में बहुत ही गहरो संबंध है, क्योंकि कणी भी देश री खाद्य सुरक्षा, किसान भाईयारी आय और अर्थव्यवस्था रे वास्ते आना दोयारो तालमेल वेणो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हो। जटे देखो आप कृषि उत्पाद रे अगर बात कर रहे हैं तो अणमें देखो आप कृषि उत्पाद जो भी अपना किसान भाई उत्पादित करें वणा ने आपा देखा तो देखो तीन श्रेणियां में मुख्य रूप आप बांट सका। पहली बात करा तो ये जल्दी नष्ट हुए वाली चीज़ें हैं, जिस तरह के अपने फल है, सब्जियाँ है, दूध है, मांस है, मछली है, अणा ने बहुत जल्दी देखो बाजार तक पहुँचाना हुए। नहीं तो कई वेगा कि देखो अगर ये संरक्षण में नहीं रखा तो जल्दी खराब व्यवहारी संभावना वह सा।
0: अंडे लारे लारे कम नष्ट वेवा वाला जिस तरह की आलू है, प्याज, लहसुन, ये जो कि कुछ हफ्ता तक सुरक्षित रह सके है, अणा उत्पादन ने भी आपा अणी श्रेणी में ने रखा हाँ सा।
1: और जटे देखो टिकाऊ उत्पाद री बात कराएं या जंडो लंबा टाइम तक अगर आप संग्रहण कर सका तो वन में देखो गेहूं है, चावल है, दाला है, मक्का है, तिलहन है। अणा ने देखो आपा वर दो वर जो है आपा संग्रहित करने रख सका तो अणाऊ कही वे कि कृषि उत्पाद जो है अगर टाइम पे अगर आपने अणारो अच्छो लाभ मिले तो वन में देखो आपा लाभ रहा। और जटे कृषि में परिवहन री भूमिका री अगर आप बात करा तो वन में देखो सबसे पहला अगर परिवहन सस्तो और सुलभ वेगा तो किसान भाई जो है खेता ने स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों देखो अपने परिवहन जोड़े तो बाजार तक जा पहुँचे वह सरल बने है।
0: और सही समय पे

0: परिवहन सुविधा मिलवाऊं, खेती बाड़ी रा क्षेत्र में ने नरेहारा लाभ भी मिले है। भारत देश में ने भी देखा तो कोल्ड चेन और हाउ परिवहन रे अभाव में ने हर साल लगभग 15-20% फल और साग सब्जियां खराब वे जावे। अगर बेहतर परिवहन वेगा तो आनी बर्बादी ने रोक सकांगा और वेवा वाला जो नुकसान है अण में ने कमी आएगा सा।
1: और देखो यदि आप जाना कि किसान भाई जो है अपने उत्पाद ने देखो मंडी तक आसानी ले जाई दे, तो वणा ने देखो कहीं दूजा पे निर्भर नहीं रहना पड़े। और यदि फसल अच्छी तरह देखो जावे बाजार में, तो वणा रो लाभ भी जो है वो अच्छी तरह मिल जावे।
0: परिवहन जो है वो केवल फसल ने बाजार तक ले जावा में नहीं नहीं बल्कि बीज खाद और कीटनाशक ने सही समय तक पे खेता तक पहुँचावारे वास्ते भी जरूरी है। यानी केवारो मतलब है कि परिवहन रे माध्यमु कच्चा माल री आपूर्ति भी सुगम वे जावे सा।
1: और जैसे देखो परिवहन रा मुख्य साधन रे अगर आप बात करा तो सड़क परिवहन में देखो टेम्पो है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, अणु कोई की खेत स्थानीय मंडिया तक देखो सामान पहुँचाओ में देखो सबसे लोकप्रिय साधन है। और घर घर पहुँचने देखो अणु जो है नुकसान में देखो ईंधन री बढ़ती कीमतें और खराब सड़क जो है वटू कठिन कटे थोड़ो लाभ वह सके है।
0: रेल परिवहन री बात करा जनमे ने मालगाड़ी है, किसान रेल है, अणेर माध्यम भारी अनाज जिस तरह गेहूं है, चावल है, अणा ने एक राज्य दूसरा राज्य में भेज सका सा। और लारे लारे हवाई परिवहन री बात करा तो हवाई परिवहन रे माध्यम महंगा और जल्दी खराब वेवा वाला उत्पाद है, जिस तरह की विदेशी फल है, फूल है, जो कि बहुत जल्दी खराब वे जावे, अणा ने विदेशा में ने निर्यात कियो जा सके है। तो ये जो परिवहन है अणा परिवहन रे माध्यम जो किसान भाई है ये बहुत ही जल्दी सुगम वणा ने पहुँचा सके है। और जल परिवहन की बात करा तो समुद्री रास्ताओं अनाज है, मसाला है, अणा ने भी दूसरा देशा तक भेजा जा सके सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ जटे। देखो कृषि उत्पाद और परिवहन की बात कर रहे हैं तो देखो जी जल्दी खराब हो वाला कृषि उत्पाद है वणा ने देखो आपा जल्दी एक स्थान और दूसरे स्थान पर पहुँचे जाएगा। अगर सड़कारी आपा बात करा तो गाँव मुख्य सड़क ने जोड़ने किसान भाई जो है ट्रैक्टर या ट्रक रे जरे मंडिया तक पहुँचा तो आपने यो कहना है देखो अंत में कि बिना कुशल परिवहन रे कृषि जो है वह अधूरी है। और आज रे टाइम में जो कोल्ड चेन परिवहन है अगर वणा ने देखो बढ़ावा दियो जी रो है ताकि जो भारत रो किसान है वो देखो आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ता जो है वणा ने ताज़ा और सही फल सब्जियां जो है या जो भी उत्पाद है वे सही समय पे प्राप्त वही सके।
0: और किसान भाई अगर आत्मनिर्भर बनेगा और वणा ने अगर बढ़िया हाउ फायदो वेगा तो किसान भाई अरे चारी मेर खुशिया ही खुशिया वेगा। और भी किसान भाई अरे खुशी ने दोगुनी करा और हुनावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: और देखो यदि खेती बाड़ी में सामान्य कृषिगत जानकारी रही अगर आप बात करा तो देखो अने टाइम पे मिट्टी में नमी बनाए रखवारे बात है, पंक्तियाँ में बीच में देखो सूखी घास या पचे फसल रहा जो अवशेष है वनडो किसान भाई देखो उपयोग कर सके, और गर्म हवाओं बचाव रे बात है खेतरी मेड़ पे देव विंड ब्रेक सिस्टम या पचे जूटरी जाली जो है वनडो उपयोग किसान भाई कर सके है।
1: घऊं ने फसल री जटे बात करा तो अनाज रे भंडारण में राखवों पेला भंडार घर री हाउ तरीकों साफ सफाई करनी है और अनाज ने भी हाउ तरीकों हुकई लेनो है। कूड़ो कचरो वेवे तो मंडे जलाई देनो है या दबाई नष्ट कर देनो है। दाणा री जो नमी है वा 12% तो ज़्यादा नहीं वेणी छावे और भंडार घर री छत है, दीवारा है, फर्श है, वणान रो एक भाग मेला थियान 50 cc 100 भाग पानी में मिलाइन वणा वणी जगह पे छिड़काव करनो है। अगर बुरा पुरानी जो बोरिया पड़ी है और वणा ने अगर प्रयोग करनी पड़े तो वणा में ने एक भाग मेला थियान और 100 भाग पानी रा गोल में 10 मिनट तक वणा बोरिया ने भिगोइन छाया में हुकई लेनी है और पचे अनाज रो भंडारण करनो है सा।
0: बिल्कुल सा, और एनी टाइम देखो अगर मूंगरी बात करा तो मूंगरी फसल में देखो एनी टाइम फूल या फल आवारी अवस्था है तो उनमें देखो नमी बनाई रखनी जरूरी है, क्योंकि नमी री कमी वेगा तो देखो पैदावार घट सके। अंडे बात है देखो हल्की सिंचाई किसान भाई करता रहे, और गर्म मौसम में देखो थ्रिप्स रो प्रकोप देखो बढ़ जावे है तो अंडे नियमित रूप पर निगरानी करता रहे, और यदि प्रकोप दिखाई दे तो अंडे नियंत्रण रो उपाय भी करे सा।
1: अणि सप्ताह में ने किसान भाइया ने कपास री बुवाई रे वास्ते खेता ने तैयार कर लेनो है और गुणवत्ता पूर्ण प्रमाणित बीज जो है वे कणी विश्वसनीय स्रोत इस खरीदना है। बेल वाली साग सब्जियां री बात करा तो कुष्मांड कुलरी जो साग सब्जियां है वणा में ने लाल ब्रिंग कीट जो है वे अंकुरित और नवी नवी जो पत्तियां आवे वणा ने खाई फसल ने नुकसान पहुंचावे है। अंडी रोकथाम रे वास्ते कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर दरु परबाते और हांजे वनारो छिड़काव करनो है सा।
0: जेटे देखो जायद मूंगफली की बात करा तो खरपतवार प्रकोप ने नियंत्रित करवा वाते उचित पैंगिंग और इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथ री गुड़ाई री देखो आवश्यकता वे, और जेटे देखो भिंडी की बात करा तो अनी टाइम पे तेज हवा चालवारी संभावना ने देखते लगा किसान भाई भिंडी और अन्य सब्जियां री तुड़ाई जो है देखो टाइम पर कर ले ताकि संभावित नुकसानों किसान भाई बच सके है।
1: अबाणु यो किसान भाई देखो गर्मियारो टाइम चाल रहे है और गर्मियारे महीना में हरा चारा री कमी जो है वह बहुत ही काफ़ी आम है। अणि वास्ते हरा चारा वाली जो फसला है जिस तरह की जवार है, बाजरो है, मक्का है, लोबिया है, अणारी बुवाई अणि टाइम पे किसान भाइया ने कर लेनी छावे जणू की हरा चारा री जो पूर्ति है वह पूरी बही सके सा।
0: बिल्कुल सा, और घर में अरे जटे बात करो देखो तो आपा तो देखो पानी पीला हाँ, लेकिन जो अणबोलिया जीव है वंडी देखो अगर आपा बात करा तो वणारे बात है देखो पानी री शुद्ध और साफ जो है ठंडा पानी री व्यवस्था मिलनी चाहे, पर बात री टेम धन री टेम और हांज री टेम जो है वणारे बात है देखो वणा ने पानी बताणो है, और टेम पे देखो पानी री व्यवस्था रखनी। अंडे लारे जो टाट पट्टिया और छाया री बात करा तो छाया रे बातें भी विशेष व्यवस्था रखनी चाहे सा।
1: तो या तो भी मौसम संबंधी और सामान्य जानकारी अबे पाछा किसान भाइया ने मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो गायत्री भाई सा अत्र अच्छो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत हुणे और लारे लारे हुणे संदेश। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा अपा किसान भाई बहना वाते रोजाना देखो नित नवी योजना री जानकारी लावा हाँ। तो आज अपा किसान भाई बहना रे वाते जणी योजना री जानकारी लाया हाँ, वह है राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना देखो अपा बात करा तो राज्य सरकार द्वारा शुरू की दी गई एक कल्याणकारी योजना है। और अणी योजना रो मुख्य रूप केंद्र सरकारी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री तरह ही काम करे है। और अंडो उद्देश्य है राज्य रा छोटा और सीमांत किसान जत्रा भी है वणा ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करनो है।
3: बिल्कुल सा, या जो राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना है अणी मैंने किसान भाइया ने आर्थिक रूप मजबूत बनावरे वास्ते केंद्र सरकार री योजना रे लारे लारे राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है। वर्तमान में ने राजस्थान रा जितना भी पात्र किसान भाई है वड़ा ने अणा दोया योजना ने मिले कुल 9000 सालाना री आर्थिक मदद दी जा रही है। अणी में ने केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपया प्रतिवर्ष यानी कि 2000 री 3 किस्ता मिलेगा और राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपया प्रतिवर्ष यानी 1000 री 3 किस्ता मिलेगा। पहला जो ही राजस्थान सरकार 2000 ने बड़े नणा ने 3000 की दो है और अभी किसान भाइया ने सालाना 9000 रुपया मिल रहा है। तो यह जो योजना है या किसान भाइयों के वास्ते बहुत ही बढ़िया योजना है।
2: बिल्कुल सही कह रहा। और यह जो भुगतान है यो DBT यानी कि यह राशि किसान रे बैंक में सीधे ट्रांसफर भई जावे ताकि कणी भी प्रकार रो भ्रष्टाचार या पचे जो बिजोलिया है वणा देखो आप वस सका। और देखो यह किस्त जो क्यों कि आप साल भर में अलग अलग किस्त रूप में किसान भाई रे खाता में भेजे जावे। और जटे अंडी पात्रता रही अगर आप बात करा तो अंडी पात्रता में जो है देखो अणी योजना रो लाभ लेवारे बात है। देखो किसान भाई बहन जो है वो मूल निवासी देखो राजस्थान रे अगर आप बात करें तो राजस्थान रो स्थायी निवासी बनो चावे और PM किसान में पंजीकरण पहला बनो चावे क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना में वंडो पंजीकृत है तो वन्ने वंडो लाभ मिलेगा। और यह योजना मुख्य रूप छोटा और सीमांत किसान रे बात है जनारे पास कृषि योग्य भूमि है।
3: किसान सम्मान निधि योजना रा उद्देश्य री जटे बात करा तो उद्देश्य मैंने छोटा और सीमांत किसान भाइया ने आर्थिक सहायता देनो है। लारे लारे खेतीबाड़ी रे वास्ते बीज खाद और अन्य जरूरी संसाधना रे खर्चा मैंने मदद करनो है। और किसान भाइया ने साहूकार या ऊंचा ब्याज वाला कर्ज रे जाल बचावनो है तो या तो किसान सम्मान निधि योजना किसान भाइया रे वास्ते घणी हांची योजना है जणू किसान भाइया ने आर्थिक मदद मिलेगा सा।
2: और जटे देखो अंडे आवश्यक दस्तावेज रे अगर आपा बात करा तो अणमे किसान भाई बहन आपा आधार कार्ड बेणो चावे जो कि बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक बेणो चावे। जमाबंदी या पचे भूमि रा दस्तावेज जो खतौनी वगैरह है वे वणा पा वेणा चावे। अंडे अलावा देखो बैंक खाता री पासबुक जन आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो है भी किसान भाई पा वेणा चावे है।
3: किसान भाई राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किस तरह कर सके वंडी बात बतावा तो या योजना PM किसान योजना जुड़ी लगी है। अणी वास्ते जना भी किसान भाई केंद्र री योजना रो लाभ मिल रो है वड़ा ने स्वचालित रूप या मामूली सत्यापन रे बाद में ने अंडो लाभ मिलवा लगेगा तो किसान भाइया ने अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जाइन आवश्यक जो भी दस्तावेज है वड़ा ने जमा कराणो है आवेदन करनो है। और अंडे लारे लारे राजस्थान सरकार रा संबंधित कृषि विभाग या जन सूचना पोर्टल रे माध्यम अणी स्थिति री भी जांच कर सके। तो या जो किसान सम्मान निधि योजना है या किसान भाई अंडो पूरो पूरो लाभ ले सके सा।
2: बिल्कुल सा। तो देखो या तो दीदी आप योजना री जानकारी और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा को तो सब किसान भाई बहन ने एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत हुणावा सा।
3: हाँ सा।

0: जो दाम है उत्पादन रो जो दाम है वो थोड़ो कम वे सके है। और यो भी ध्यान रखनो है कि इंटरनेट या ऐप पे दिखाए लोगों अधिकतम जो भाव है वो सब हाउ गुणवत्ता री फसल रो वेवे है। तो आपरी फसल री नमी और सफाई रे आधार पर भी वना फसला रो मूल्य तय वेवे है सा।
1: बिल्कुल सर। और जटे देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य री बात करा MSP, तो कणी भी मंडी में जावाऊँ पहला जो सरकार द्वारा तय की गई जो MSP है, वनडी देखो आपने जो सरकार तय की दी है रेट, वनडो देखो आपने जानकारी वेणी जरूरी है ताकि आप अपने फसल रो सही मूल्य जो अणी भी मंडी में आप अनाज ने बेचवा जा रहा हाँ वणी जगह मल सके। तो आपा तो किसान भाई बहना ने कहंगा कि देखो डिजिटल हो आप जुड़ो, मोबाइल है इंटरनेट हो अगर आप देखो वनडो उपयोग करो तो वणु कही वेगा कि आपने घर बैठा सारी सुविधा जो है प्राप्त वेगा और आपने जो देखो घर बैठा लगाना सब जानकारी रो आप ले सको।
0: तो या तो किसान भैया ने जानकारी कराई है बाजार मूल्य री जानकारी, और अगर बाजार री मूल्य री सही जानकारी किसान भैया ने वेगा तो खेती बाड़ी रा जो उत्पादन है वना रो सही मूल्य किसान भाई ले सकेगा। और अगर सही मूल्य किसान भाई रे हाथे लगेगा तो वे हाउ वना रो आमदनी वेगा। और आमदनी री जटे बात करा तो आमदनी अगर हाउ वेगा तो खुशिया ही खुशिया वेगा, क्यों नहीं किसान भैया री और भी खुशी ने चौगुनी करा। और होना वा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो गायत्री भाई सही हो तो हुणो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और लार लार हुणिया संदेश। और देखो आपा कार्यक्रम में कृषि री बात करा तो कृषि में किसान भाई बहन देखो खेतीबाड़ी तो करे लेकिन अने खेतीबाड़ी में अगर फसल चक्र अपनाए तो फसल चक्र हूँ कही वेगा कि वणारी मिट्टी जो है वह स्वस्थ वेगा और फसला जो है वह समृद्ध वेगा। तो फसल चक्र कई है देखो यह जानकारी करावा आपा किसान भाई बहनों ने।
3: बिल्कुल सा फसल चक्र जो है वो एक ही खेत में ने अलग अलग फसला ने एक निश्चित क्रम में उगाणो है। फसल चक्र क्यों करना चाहे किसान भाई ने अंडी भी जानकारी बतावा कि अणु कही है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े है, लारे लारे कीट और बीमारियां रो नियंत्रण भी वेवे है। फसल चक्र रे माध्यम में खरपतवार रो प्रबंधन भी कर सका और मिट्टी री संरचना में ने सुधार आवे है, लगातार उत्पादन और आय में भी वृद्धि वेवे सा।
2: बिल्कुल सा। और जड़े देखो फसल चक्र री बात कर रहे हो तो फसल चक्र में किसान भाई देखो दलहन में दलहन है, दाला है, मटर है, अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन में सरसों, सूरजमुखी और जड़े रेशेदार फसला री बात करा तो किसान भाई चारों उगे सके, कपास उगे सके। तो ये फसल चक्र में अगर सभी प्रकार संयुक्त घटक अगर किसान भाई बहन ले तो वणा ने लाभ वे हैसा।
3: फसल चक्र रा उदाहरण री जटे बात करा तो अगर एक वर्षीय किसान भाई फसल ले रहा है तो मक्का रे लारे गेहूँ ले सके, धान रे लारे भी गेहूँ है, कपास रे लारे गेहूँ ले सके है। दो वर्षीय फसल री बात करा तो गन्ना और गेहूँ जो है वे लारे लारे उगे सके है किसान भाई। बहुवर्षीय री बात करा तो दलहन है, दलहन रे बाद में किसान भाई अनाज ने भी उगे सके और अनाज रे बाद में तिलहन ने भी उगे सके। तो अगर किसान भाई फसल चक्र ने अपनाएगा तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा और लारे लारे फसला ने भी समृद्ध बनावारी या एक बहुत ही बढ़िया कला है सा।
2: बिल्कुल चा। जड़े सफल फसल चक्र री बात करा तो धान री फसल रे लारे आपके गेहूँ सरसों ले सके, सर्दी रे महीने देखो मूंग है या पाचे ग्रीष्म में मूंग आई जाए, पाचा सर्दी में जो है एक अन्य फसल ले ले तो अनेक प्रकारों किसान भाई एक ही साल में तरह तरह री भांत भांत री जो फसला लेगा तो वणों जो देखो मिट्टी जो है वनडी उर्वरता बनी रहेगा और नियमित रूपों जो वणा ने आमदनी है वंडो भी झरियो प्राप्त वेगा सा।
3: आपा तो किसान भैया ने कार्यक्रम रे माध्यम ये इस बात कहा कि फसल चक्र ने अपनानो है और समृद्ध फसल पानी है। अगर किसान भाई फसल चक्र ने अपनाएगा तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा, लारे लारे वेवा वालों जो उत्पादन है वो भी घणो हांचो वेगा और उत्पादन अगर हांचो वेगा तो किसान भैया ने आमदनी भी बढ़िया मिलेगा सा।
2: और देखो कार्यक्रम में को तो चलता चलता सब किसान भाई बहना ने और आपा सब एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत होना सा।
3: हाँ सा।

0: तो देखो गायत्री भाई, सात रुपया रो राजस्थानी लोकगीत आप हुणियो और देखो घड़ी रे आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवा रो अपनो टाइम वेरो तो आज्ञा लासा। जय जवान
1: जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल के युगल स्वर में फिल्म सूर्य वंशम का ये गीत अभी हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज भी किया। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में फिल्म लम्हे से। इस गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत गायल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। दिलकश आवाज़ थी शब्बीर कुमार शानू और आशा भोसले की। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुँचाते हैं। हाउसफुल फिल्म से मिक्का, सुनिधि चौहान और साजिद खान की दिलकश आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। राम लखन फिल्म का ये गीत अभी हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया। दिलकश आवाज थी लता मंगेशकर व साथियों की। इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश जॉय बरुआ की आवाज में फिल्म लैला मजनू से आपके रेडियो सेट पर आ रही है। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस गीत को।

मोहित चौहान की आवाज में जब वी मेट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोता आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस आखिरी गीत को।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत के इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे रात्रि 9:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री

0: मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के

संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण

0: संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज
2: आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Shivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
2: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

और इस गीत के साथ ही यानी कि गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं फिल्मी संगीत की दुनिया में, लेकिन इस बार आपके रेडियो सेट पर पहुंचाएंगे नई फिल्मों के गीत। पहला गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में फिल्म धुरंधर से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और फिल्म संगीत के सेगमेंट में हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं नई फिल्मों के गीत। अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है बॉर्डर 2 फिल्म से सोनू निगम की दिलकश आवाज़ में।

आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत के अंतर्गत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं नई फिल्मों के गीत। और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है बी प्राक की आवाज़ में फिल्म स्काई फोर्स से।

आग आग है सांसों में, अड़ी रहे चट्टानों से, भीड़ का जंगल दुनिया है तो लड़ी है ये अंगारों की।

जी हाँ श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे मर्दानी 3 के इस गीत को हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया। दिलकश आवाज़ थी सार्थक कल्याणी और श्रुति शुक्ला की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और फिल्म संगीत के इस चंक में हम आपके रेडियो सेट पर पहुँचा रहे हैं नई फिल्मों के गीत। तो अगला गीत आपके रेडियो सेट पर हम पहुँचाते हैं सितारे जमी पर फिल्म से अरिजीत सिंह और शवीरा पारुलकर की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस नगमे को।

और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म वध 2 से प्रीतम, अरिजीत सिंह और समीर अंजान की दिलकश आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस आखिरी नगमे को।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्वाति आपके लिए आपका पसंदीदा फिल्म संगीत लेकर। फिल्म संगीत के इस सफ़र में आपको देंगे कुछ नया। जी हाँ, इस फिल्म संगीत के इस सफ़र में हाफ सेगमेंट में आप सुनेंगे चांद शब्द से जुड़े शीर्षक गीत, और हाफ सेगमेंट में कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचाएंगे, यानी कि एक ही फिल्म के गीत आपके रेडियो सेट पर आएंगे। और आज की जो फिल्म हमने ली है वो है बेताब। तो शुरुआत करते हैं पहले हाफ सेगमेंट की, जिसमें हम आपको चांद शब्द के शीर्षक गीत सुनवाएंगे। पहला गीत फिल्म तेरे नाम से उदित नारायण की आवाज में आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस पहले नगमे को।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और इस सेगमेंट में हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं चांद शब्द के शीर्षक गीत। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ये गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और फिल्म संगीत के इस सेगमेंट में हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं चांद शब्द के शीर्षक गीत। तो ये अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म दिल तो पागल है से।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। फर्स्ट हाफ में हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाए चांद शब्द के शीर्षक गीत और अब सेकंड हाफ में एक बार फिर से सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सेकेंड हाफ में हम आपके लिए लाए हैं एक ही फिल्म से के सारे गीत और आज की जो फिल्म हमने चुनी है वो है बेताब। बेताब 1983 में बनी जावेद अख्तर द्वारा लिखित, राहुल रवेल द्वारा निर्देशित और विक्रम सिंह द्वारा निर्मित एक भारतीय रोमांस फिल्म थी। फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में अभिनय किया सनी देओल और अमृता सिंह ने और दोनों ही अभिनेताओं अभिनेत्री की शम्मी कपूर के साथ यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों में आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। तो आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं बेताब फिल्म का ये गीत।

चुनी है बेताब फिल्म के गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। और इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई थी, जिसमें पहलगाम और शेषनाग शामिल थे। फिल्म के बाद जिस घाटी में शूटिंग हुई थी उसे बेताब घाटी के नाम से भी जाना जाने लगा।

श्रोताओं, यह फिल्म 1983 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे समीक्षकों द्वारा भी बहुत सराहा गया था। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और इस सेगमेंट में आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं बेताब फिल्म के गीत और अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और 11:05 पर समाचार प्रसारित होंगे अंग्रेजी में। अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार

0: करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former

Fuori papà!